लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी चाहे ज्यादा लंबी ना हो, पर जितनी भी हो बेहतर हो, जिसमें ईर्ष्या द्वेष वैर भाव ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। आइए सुनते हैं सच्चाई फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कर्म।

एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के बैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 5:56:48, और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हमारी आज की प्रसारण सभा में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत है।

FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं और आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सबसे पहले माँ भारती की ये वंदना।

श्रोताओं, इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन का विषय है धर्म का मार्ग और चिंतक है डॉक्टर केशव कान्हेरे

शरशैया पर पड़े हुए थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके दर्शन के लिए पहुँचे। आज्ञा पाकर धर्मराज ने पूछा, दादाजी धर्म का मार्ग बड़ा ही विस्तीर्ण है और फिर उसकी अगणित शाखाएं भी हैं, उनमें किसको आप श्रेष्ठ सुगम और प्रधान मानते हैं? इस पर भीष्म जी बोले, राजन समस्त धर्मों से उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। सब प्रकार की पूजा से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। माता पिता और गुरु जिस बात की आज्ञा दे उसे बिना सोचे विचारे पालन करना चाहिए, क्योंकि वे अहित की बात कह ही नहीं सकते। जिस काम को करने की उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है। माता पिता और गुरु यही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं। पिता की सेवा से यह लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। इसमें गुरु का दर्जा माता पिता से भी श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं अपितु गुरु को साक्षात परब्रह्म की संज्ञा दी गई। श्लोक प्रसिद्ध है, गुरु ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु आज के वर्तमान युग में गुरुओं की और शिष्यों की भरमार हो गई है। कहीं कहीं तो कुछ गुरु अपने आप को भगवान ही समझने लगे हैं। सद्गुरु के संदर्भ में संस्कृत का एक सुभाषित प्रसिद्ध है, गुरुवा सन्ति बहवा शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभ सद्गुरु लोके शिष्या चित्तापहारकः।

0: शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एवं तथाकथित गुरु और सद्गुरु, इसका अंतर इस सुभाषित द्वारा स्पष्ट किया गया है। शिष्य के वित्त का अर्थात उसके धन का अपहरण करने वाले गुरुओं की संख्या बहुत अधिक है। अपने आचरण से प्रभाव डालने वाले, उसका चित्त हरण कर शिष्य का जीवन कृतार्थ करने वाले गुरु प्राप्त होना दुर्लभ हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना संपूर्ण स्वराज्य अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी की झोली में समर्पित कर दिया था, परंतु समर्थ ने उसे स्वीकार न करते हुए कहा, मेरी आज्ञा है स्वराज्य का संचालन सुचारू रूप से धर्म के अनुसार करो। शिवाजी ने ऐसा ही किया, इतिहास साक्षी है। सद्गुरु होता है समर्थ रामदास स्वामी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा, और सत्शिष्य कहलाते हैं श्री शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद जैसे। गुरु तो उस दिव्य आत्मा का आत्मतत्व का ज्ञान देता है, जिससे शिष्य जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही सद्गुरु के लक्षण होते हैं।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज के चिंतन का विषय था धर्म का मार्ग, और चिंतक थे डॉक्टर केशव कान्हेरे। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज के कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

मेघनाथ के नागपाश में अपने को बंधा लेना श्री रामचंद्र की एक रणलीला थी। महर्षि नारद द्वारा भेजे जाने पर गरुड़ ने वह नागपाश तो काट डाला, किंतु उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जो व्यापक विकार रहित और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वह ऐसे पाश में किस प्रकार बंध सकते हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए पक्षीराज महर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद जी ने उनके मोह का रहस्य ताड़कर उन्हें ब्रह्मा के पास भेज दिया, जिन्होंने संपूर्ण जगत की रचना की है। स्वयं उन ब्रह्मा को भी तो माया के प्रभाव में परमेश्वर ने कई बार नचाया है, अतः वह क्या कहते। उन्होंने गरुड़ को भगवान शंकर के पास जाने का परामर्श दिया, क्योंकि शंकर जी ही श्री राम की महिमा को भलीभांति जानते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुनिए कार्यक्रम कृषि सामग्री। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल से संबंधित जानकारी आपको दे रहे हैं श्री एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों नमस्कार, इसमें आपने ग्रीष्मकालीन मूंग लगा रखी होगी और निश्चित तौर पर अच्छी ही फसल होना चाहिए, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ से शिकायत आई है कि हमारी खेत की मूंग में इल्ली आना शुरू हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने खलिहान में रखी फसलों को जल्दी गहाई कर लें, गहाई करके एक दो दिन सुखा करके उनको भंडारण कर लें। उसके बाद अब रही बात आपकी मूंग की और ग्वार की, तो लगभग तापक्रम 42 के आसपास हो गया है, तो अब आपको हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक निंदाई का सवाल है, तो निंदाई आप जो लाइनें हैं दो लाइनों के बीच में हो के द्वारा आप हो चलाकर निंदाई कर सकते हैं, या श्रमिक लगा करके आप निंदाई करा सकते हैं खुरपी के द्वारा। इस अवस्था में अब खरपतवार नाशी दवा डालना संभव नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यदि खरपतवार नाशी दवा डालेंगे तो हमारा जो फूल आने की अवस्था है और फलियां बनने की वो प्रभावित होंगी, इसलिए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, जो छोटी इल्ली जो दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो पत्तियों का रस चूसती है, और यहाँ तक कि रस इल्ली के अलावा माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जेसेड है, ये भी थोड़ी मात्रा में कीट दिखाई देते हैं। खरीफ की तुलना में ग्रीष्मकाल में बहुत कम, ना के बराबर कीड़े लगते हैं, लेकिन इल्ली की जानकारी प्राप्त हुई है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा, अगर ये उपलब्ध ना हो पाए तो डाई मिथोएट 30 EC 800 ml दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये जो इल्लियां हैं उनका कंट्रोल हो जाएगा। एक फली बीटर और फली छेदक, जो हमारी मूंग की फलियां बनती हैं उनमें इल्ली छेद करके फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो इस प्रकार की इल्लियों की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास नाम की दवा आती है, ट्राइजोफास 40 EC दवा, इसको क्या करना है, 900 ml दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग

0: पर खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें और इस तरह से आपका जो किसी भी प्रकार की इल्लियां हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। हालांकि ग्रीष्म काल में मूंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, लेकिन यदि आपको लगे कि पीला मोजेक कहीं दिखाई दे रहा हो तो इसके लिए मिथाइल डेमेटान 25 ईसी दवा आती है, इसको 1 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर से 1-2 बार छिड़काव करने से ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है और अगर सफेद मक्खी नष्ट हो जाएगी तो पीला मोजेक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगर आपको रोगी पौधे मिले ज्यादा तो उखाड़ करके आप जमीन में दबा सकते हैं, इस तरह से भी हम अपना पीला मोजेक से नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्वार का सवाल है, कुछ किसान भाइयों ने ग्रीष्म काल में भी कुछ किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगाई है, तो किसान भाइयों तापक्रम की बात मैंने बता दी कि लगभग 42 के आसपास हो गया, इसलिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। ग्वार गहरी जड़ों वाली फसल है, इसलिए इसे हर हफ्ते पानी देना आवश्यक है और इसको पानी की ग्रीष्म काल में ज्यादा आवश्यकता होती है और फूल आने पर तो पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसको सिंचाई का ध्यान रखें। खरपतवारों की जहाँ तक सवाल है, पौधे बड़े बड़े होने की अवस्था में हैं, अगर आप खेत में आसानी से चल सकते हैं तो हो के द्वारा ही आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। हालांकि छाया अगर ज्यादा हो गई हो तो खरपतवार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, इसमें माहू और सफेद मक्खी और पत्ती छेदक कीट जो होते हैं ये बहुत प्रभावित करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए 0.5% मेलाथियन 50 ईसी दवा या 0.07% इंडोसल्फान 33 ईसी का छिड़काव करें। अगर किसी प्रकार की जैसे बीमारी रहती है पर्णांग वाली बीमारी से बचने के लिए, पहले तो बीजों को हमको यानी आप चाहें तो 100 ppm स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचारित करके बोना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि पत्तियों पर आ गया है तो ट्रेप्टोमाइक्लिन 150 ppm यानी 0.2% ब्लीटॉक्स के मिश्रण का छिड़काव करें, तो इस तरह की जो चूर्णी आस्था वगैरह भी है वो भी खत्म हो जाएगी। और सिंचाई का ध्यान रखें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामायिकी, और कृषि सामायिकी में ग्रीष्मकालीन मूंग और ग्वार फसलों की सामायिक कार्य विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे श्री SS चौधरी। अब हम कार्यक्रम से संबंधित जानकारी आपको देते हैं, और हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे। कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता, और लघु वार्ता का विषय रहेगा वसुंधरा। 9:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:45 पर हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश, 9:00 आकाशवाणी के 90 बूथ पूर्ण होने पर उपलक्ष में आप सुनेंगे आज विशेष लोक संगीत का कार्यक्रम, 9:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 10:00 जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, 10:05 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे मेहंदी हसन को, 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा, और 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के तहत आप 1:00 सुनेंगे महिला कार्यक्रम, इंदौर केंद्र से हम प्रस्तुति रहेगी, 5:00 युववाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति आप सुनेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम लगातार आप सुनते रहेंगे, और ये थी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। श्रोताओं, आप सुनिए कुछ जरूरी संदेश।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया।

0: है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined the stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the
2: एफएम एंड 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है लघुवार्ता। आज की लघुवार्ता का विषय है वसुंधरा। श्रोताओं, वसुंधरा वसुंधरा हमारी माँ, हमारी धरती हमें पालन पोषण करती है, उपजाऊ फसलों से हमारा पेट भरती है, हमें सांस देती है और अपने आगोश में सुरक्षित रखती है। लेकिन हम अपने घर को घर मानते हैं, चार दीवारी को सब कुछ मानते हैं और वसुंधरा को भूल जाते हैं। यही बात है कि वसुंधरा अब पूरे रौद्र रूप में आपको नजर आ रही है। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे तो आपको वो तस्वीरें विचलित करेंगी जो इस समय आपके आसपास घटित हो रही हैं। आंधी का ऐसा वमंडर कि आप पूछिए मत। जमीन से पेड़ों का उखड़ना, जमीन पर धराशायी होकर गिरना और हवाओं का इतनी तेज गति से चलना अपने आप में प्रकृति का एक विनाशकारी संकेत है। इसके पीछे की कहानी अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब में मिलेगा हमारी और आपकी गलतियों का परिणाम। जी हाँ, ये सब कुछ जो है इंसानी गलतियों का परिणाम है। हमने प्रकृति का दोहन किया और अपने आसपास जो कुछ मुफ्त था उसको हमने इतनी तादाद में ग्रहण करना, उपयोग करना शुरू कर दिया कि हम उसके स्रोत को भूल गए। यही वजह है कि प्रकृति अब करे तो क्या करे। ये वसुंधरा कैसे अपने आप को संभाले, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि अब ना शीत ऋतु का ठिकाना है, ना ग्रीष्म ऋतु का और ना ही वर्षा ऋतु का। हमने और आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि अचानक बेमौसम बरसात, अचानक ओलावृष्टि, अचानक अतिवृष्टि, अचानक सूखा। तो ये जो दौर है और ऐसे दौर में हवाओं का तेज गति से चलना, नुकसान करना, ये सब हमें एक संकेत देकर समझाने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इंसान अपने आसपास के वातावरण को सिर्फ अपने घर तक सीमित रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि असली घर ये वसुंधरा है। यहाँ पर्यावरण को सहेजना, जल स्रोतों को बचाना, पेड़ बचाना, पौधों को रोपित कर पेड़ बनाना, ये हम इंसानों का ही तो कर्तव्य था, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि हम धरती पर अगर रहते हैं तो यही सब है जिनसे हमारा जीवन चलता है। जीवन चक्र के साथ चलने वाले इन तमाम आयामों को हमने नज़रअंदाज कर दिया। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ताल तालाब कुएं बावड़ी इनका सबका दूषित होना, नदियों का रूट कर रुख बदल देना, सूख जाना, पानी का दूषित हो जाना, सब हमारे समुद्रों को प्रभावित कर रहा है। जल जीवन पर उसका असर पड़ रहा है। इस पूरे सिस्टम में अगर आप बहुत गौर से समझेंगे तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। हम यहाँ भारत में रहते हैं और सोचें कि वहाँ विदेश में, विदेश की धरती पर कुछ होगा तो उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा, ये हमारी गलत फहमी है। हम ग्लोबल हैं, एक गोलाकार क्षेत्र के इस वसुंधरा के आंचल में एक साथ रहते हैं। कहीं भी कुछ भी होगा तो असर हर किसी पर पड़ेगा और यही इकोसिस्टम है, यही आपस में कनेक्शन है। पहले पहाड़ से बर्फ पिघलती है, नदी बनती है, नदी चलती है, समुद्र में मिलती है, तो पर्यावरण चाहे कहीं भी दूषित हो वो हर जगह दूषित ही होता है। तो अपने पर्यावरण को संभालिए, पौधों को वृक्ष बनाइए और अपनी वसुंधरा को बचाइए। थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगी शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली की 2 दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। इसके पूर्व कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के प्रयास करने चाहिए।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य हिस्सा लेंगे, जो परिषद में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य तथा राज्यों के बीच आपसी मामलों पर विचार विमर्श कर उनके लिए सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के बस्तर में बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और हॉक फोर्स के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश पुलिस को यह सम्मान बालाघाट एवं छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफल एंटी नक्सल ऑपरेशंस, प्रभावी अंतर्राज्यीय समन्वय, मजबूत खुफिया नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रों में सतत अभियान

0: संचालन और सुरक्षा तथा विकास आधारित पुलिसिंग मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए प्रदान किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए आगामी 1 जून से 15 दिनों तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा।
1: प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, ICAR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगी। सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार एवं तकनीकी आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर शासकीय विभाग और औद्योगिक इकाइयों की नवाचार, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप एवं तकनीकी आधारित पहल की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सम्मेलन के दूसरे दिन 20 मई को सदस्य देश अपने देशों के उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और युवा उद्यमिता पहल की जानकारी साझा करेंगे। वहीं अंतिम दिन 21 मई को उद्यमिता क्षमता और नेतृत्व विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित व्हाट्सएप चैटबॉट प्रचार अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आज की महती आवश्यकता है। वहीं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। छठवां राज्य वित्त आयोग 20 एवं 21 मई को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के दौरे पर रहेगा। इस दौरान आयोग स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा आर्थिक स्वावलंबन के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव प्राप्त करेगा। आयोग की टीम आज शाम ग्वालियर पहुंचेगी। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, सदस्य के सिंह तथा सदस्य सचिव वीरेंद्र कुमार कल ग्वालियर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इससे पहले कल के हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। वहीं हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हॉकी इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को हॉकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से कल आगरमालवा जिले के प्रवास पर जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ माँ बगलामुखी के दर्शन करेंगी। धार सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को 5 वर्ष के वेतन के बराबर राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। गुना जिला प्रशासन की सहभागिता से गेल विजयपुर संयंत्र में कल दोपहर 3:30 पर संयुक्त रूप से ऑफ साइट आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कटनी कलेक्टर ने अनुसूचित जाति

एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पुनर्वास के लिए जिले में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया है। इंदौर में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक अब वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। डिंडौरी में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के प्रचार प्रसार के लिए एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया गया और एनटीपीसी विंध्याचल में आयोजित विंध्याचल प्रीमियर लीग में विंध्याचल वॉरियर्स ने विंध्याचल स्ट्राइकर्स को हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगे शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और सुबह के 7:45 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार शिवपुरी जी, हाँ मैं हूँ आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपके चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, स्वास्थ्य आपका सकुशल होगा और आप यकीनन अपने परिवार, समाज और देश के लिए काम कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह, क्योंकि हम लेते हैं इस कार्यक्रम को आपके साथ बहुत गंभीरता से और सुबह सुबह आपको अपडेट करने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। अलग अलग रेडियो मित्र आपसे मुखातिब होते हैं और आपको जानकारियां देते हैं। आज ये जानकारी आप सुनेंगे मेरे साथ, मैं हूं अतुल आपके रेडियो मित्र के रूप में। तो अब हम अगर आपसे कहें कि तमाम सारी जानकारियां हैं, तो हम आपको बारी बारी से उन जानकारियों से अवगत कराते हैं। खरीफ पूर्व कृषि रथ के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी जा रही है और ग्राम सोहरा टोंगरा पेपरसमा में ये जो चौपाले हैं वो लगाई जाई और उसके बाद वहाँ के किसानों को जानकारी दी गई। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित 10 दिवसीय खरीफ पूर्व कृषि रथ अभियान के द्वितीय दिवस विकासखंड शिवपुरी की ग्राम पंचायत सोहरा टोंगरा और पेपरसमा में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। पर्यटन स्वागत केंद्र पर जो रिक्त दुकानें हैं, ये हम हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और उसी की दृष्टिगत अगली जानकारी है। पर्यटक स्वागत केंद्र शिवपुरी पर रिक्त दुकानें एवं भदिया कुंड कैफेटेरिया संचालन की नीलामी 20 मई को की जाएगी और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के अधिपत्य अंतर्गत पर्यटक स्वागत केंद्र छतरी रोड शिवपुरी में रिक्त दुकानों तथा भदिया कुंड कैफेटेरिया संचालन एवं साधारण कार्य की नीलामी की जा रही है। नोडल अधिकारी सचिव जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद ने बताया कि दुकान क्रमांक 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17 एवं 18 कुल 10 दुकान एवं भदिया कुंड कैफेटेरिया के संचालन साधारण कार्य की निविदा हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। कोई भी भारतीय नागरिक अथवा संस्था जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा आर्थिक अपराध का प्रकरण पंजीकृत न हो और देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न न हो, वह नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अगली जानकारी, फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण से संबंधित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन। नगरीय निकाय एवं पंचायतों की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में पश्चात जिलाधीश कार्यालय से सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर श्री मोतीलाल अहिरवार ने की। बैठक में जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री मोतीलाल अहिरवार के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण अंतर्गत चल रही दावा आपत्ति प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। बिजली की कटौती से संबंधित जानकारी, जी हाँ, आज हम आपको बता देते हैं कि डाक बंगला उपकेंद्र अंतर्गत आने वाले 11 केवी कमलागंज फीडर तथा 11 केवी भेड़ फॉर्म फीडर पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा और आज 19 मई को उक्त फीडर से जुड़े समस्त क्षेत्रों का विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। उक्त 11 केवी कमलागंज फीडर के बंद रहने से प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक माधवनगर, गणेश कॉलोनी, नवाब साहब रोड, वर्मा कॉलोनी, टोंगरा रोड, ITBP गेट के आसपास, रायन मार्केट, राघवेंद्र नगर, विजयपुरम कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। भेड़ फार्म बंद रहने से दोपहर प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कमलागंज बैंक कॉलोनी, बाबू क्वार्टर, नवग्रह मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। और अब साइबर अपराधियों से सावधान रहने वाली जानकारी, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का नगद भुगतान कंपनी के जोन वितरण केंद्र कार्यालय POS मशीन अथवा अधिकृत भुगतान केंद्रों जैसे MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करें। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के कनेक्शन और कैशलेस भुगतान के लिए कंपनी के पोर्टल, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI, ECS, BBPS, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि फोन पे सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे साइबर अपराधियों से सावधान रहें और पूरी विश्वसनीयता वाले पोर्टलों के माध्यम से भुगतान करें। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में शहीदों की विधवाओं एवं संतानों के लिए अब एक सीट रहेगी आरक्षित। उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जारी
किए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं तथा उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन अधिकारियों ने की यात्रा बसों की जांच। चालानी कार्रवाई में 1,04,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। मक्सी दहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवा को सख्त निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो इसलिए लगातार बसों की सघन जांच की जाए। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना कुशवाहा ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार लगातार टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ। पीएम जनमन एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर पर आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ जनपद पंचायत शिवपुरी में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमलता रावत ने की। अभियान के अंतर्गत जिले के पीएम जनमन चिन्हित 776 ग्रामों में 18 मई से 25 मई तक विभिन्न गतिविधियों एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तमाम सारी जानकारियां हम आपको देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर तरह की जानकारी से आप अपडेट रहें, चाहे वो बिजली कटौती हो, रोजगार के अवसर हो, दुकानों की नीलामी हो या फिर प्रशासनिक कार्रवाई हो, सरकारी योजनाएं हैं, उन तमाम चीज़ों को जोड़कर इस कार्यक्रम को हम न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि सुबह सुबह आपको अपडेट करने का उद्देश्य रखते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ तमाम सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आता है और आप इसका लाभ लेते हैं, क्योंकि सूचना तंत्र अगर आपके पास है और आपको समय से सूचनाएं मिलती हैं तो निश्चित जीवन में उपयोगी साबित होती हैं। अब चलते चलते बात करते हैं मौसम की। अब मौसम से जुड़ी हुई जो जानकारी

है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। देखिए मित्रों, अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि पारा अभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा, चिंता का कारण है। लेकिन जो कुछ भी बदलाव प्रकृति में देखा जा रहा है वो आपको महसूस करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पिछले 2-3 दिनों के तापमान की, तो लगभग तापमान जो है 41, 42 और 43 डिग्री के आसपास तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। अगर बात करें आने वाले कुछ दिनों की, तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी इसी तरह का टेम्परेचर बना रहेगा। हवाएं बहुत धीमी गति से चलेंगी, लेकिन बीच में आंधी और तूफान की समस्या भी आ सकती है। इलाके में सावधान और सतर्क रहने की गुंजाइश इसलिए भी बनती है क्योंकि अगर कहीं आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी उठाना पड़ सकती है। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने आपको संभल कर चलने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मौसम में बहुत ज़रूरी होने पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ना निकले तो बेहतर है, और अगर आपको निकलना बहुत ज़रूरी है तो पूरे शरीर को ढांक कर निकलें, पानी पीकर घर से निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इस तरह के तमाम सारे उपाय हैं जो आपको इस हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। खास तौर से तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखें और उन्हें पूरी निगरानी में रखते हुए अपनी तरफ से केयर करने की कोशिश करें। यदि किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है तो चिकित्सकों का साफ साफ निर्देश है कि अपने मन से बिना सोचे समझे किसी भी तरह का उपचार न करें, कोई दवा ग्रहण ना करें, अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और परामर्श उसी चिकित्सक से लें जो जिम्मेदार है और पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। और अगर आप वहां जाकर के अपनी समस्या देते हैं तो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको उपचार दिया जाएगा जो आपकी सेहत के लिए उपयोगी होगा। अपनी मर्जी से किया गया उपचार, अपनी मर्जी से ली गई दवाएं घातक हो सकती हैं और गर्मी के इस मौसम में आपको तकलीफ दे सकती हैं, तो सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा अगर हम आपसे बात मौसम और मौसम से जुड़ी हुई सावधानियों की कर रहे हैं तो ये भी बताते चलें कि अभी तापमान से अगले कुछ 8 से 10 दिनों तक निजात नहीं मिलेगी और तापमान आपको इसी तरह से 41, 42, 43 और 44 डिग्री तक महसूस करना पड़ सकता है। तो सावधानी निश्चित तौर पर ज़रूरी है। आसपास आप देख रहे हैं कि अगर लू चलती है तो फिर आपका थोड़ा सा अपने प्रति जिम्मेदार होना ज़रूरी बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, मौसम की मार से बचने के उपाय करते रहेंगे, बुज़ुर्गों, परिवार के बच्चों को संभाल कर रखेंगे और अपने खुद का ख्याल रखेंगे। अब आप मुस्कुराते रहिए, अपडेट होते रहिए, अपने परिवार, समाज और देश के लिए काम करते रहिए। इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो रखिए अपना ख्याल, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज

0: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि हम आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं, तो फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में बहुत सारे पत्र भी हम तक पहुंचते हैं। अगला पत्र आया नेपाल परेश सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन के साथ उनके परिवार के सदस्यों का। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ ये पत्र हम तक पहुंचाया गया है। और श्रोता है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से, कुमारी वंदना, परी, गणेश, कार्तिक और स्वाति, ललिता, नारायण, भाऊ खर्चे और उनके परिवार के सदस्यों का। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ अगला फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचा है। और हम इस पत्र में आपको बता दें, महादेव घाट अम्लेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर के साथ उनके परिवार के सदस्यों ने गीत सुनने की फरमाइश की है। तो आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। सुबह के 9 बजे हैं, हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 MHz पर।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 15 मई 2026 को आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष लोक संगीत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। आज के लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए मोहन सिंह यादव एवं साथी कलाकार हैं श्री वनमाली, श्री हुकुम सिंह, श्री विनोद डोंगरे, श्री छोटेलाल परिहार, श्री लक्ष्मण प्रजापति। कार्यक्रम का शुभारंभ करें उससे पहले स्वागत।
1: विदित है और आप पीछे देख भी रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगातार भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि रेडियो की वाणी जन जन तक पहुंचे। इस तारतम्य में आज एक लोक संगीत का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और जो गायक कलाकार हैं बी हाई ग्रेड के कलाकार हैं श्री मोहन सिंह यादव और उनके सदस्य हैं, उनके द्वारा जो गायन होगा वो आप तक पहुंचेगा। और आज इस अवसर पर हमारे साथ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी के छात्र यहाँ पर हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य गणमान्य अतिथि भी हैं, उनका भी हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। और हमारे साथ आज हमारे सहायक निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर लेकिन समानांतर रूप से आकाशवाणी शिवपुरी का भी उन पर चार्ज है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी शिवपुरी परिवार के सभी लोग हैं, उनका भी जिन्होंने इस तपती दोपहर में अपना वक्त हमें दिया है, हमारे साथ रह रहे हैं, उनका हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर ये भी बताना समीचीन होगा क्योंकि 90 वर्ष हुए हैं रेडियो, इस समय जो हमारे साथ नई पीढ़ी बैठी है इन्होंने तो रेडियो का दौर ही नहीं देखा, ये इंटरनेट के दौर में पैदा हुए हैं सारे बच्चे हैं, कोई फर्स्ट ईयर का होगा कोई सेकंड ईयर का होगा, तो इन्होंने रेडियो को देखा नहीं है लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी सुना होगा। रेडियो पर एक जमाने में लाइसेंस भी लगता था, तो आकाशवाणी ने बहुत विरासत उसके लाइब्रेरी में है। लोकगीत के बारे में ही बता दें, लोकगीत हमारी माटी के गीत होते हैं जिसे हम कल्चरल या हेरिटेज कह सकते हैं, आज के बच्चों के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस तरह का विंटेज कलेक्शन का दौर है। तो अब मैं वक्त नहीं ले रहा हूँ, अब हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने लोकगीत आरंभ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मिल गई ऐसी धनिया रे कहीं जा।
4: शुद्ध आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से कार्यक्रम लोक रंग। आज के कार्यक्रम लोक रंग में आप सुन रहे हैं श्री मोहन सिंह यादव एवं साथियों के गाए हुए कुछ लोकगीत। मोहन सिंह यादव के साथ साथी कलाकार हैं श्री वनमाली, श्री हुकुम सिंह, श्री विनोद डोंगरे, श्री छोटेलाल परिहार और श्री लक्ष्मण प्रजापति। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग में अगला लोकगीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से कार्यक्रम लोकरंग। आज के कार्यक्रम लोकरंग में आपने सुना श्री मोहन सिंह यादव और साथियों को। श्री मोहन सिंह यादव के साथ उनके साथी कलाकार थे श्री वनमाली, श्री हुकुम सिंह, श्री विनोद डोंगरे, श्री छोटेलाल परिहार और श्री लक्ष्मण प्रजापति। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइश गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आप सबकी पसंद के गीत के साथ। फरमाइश गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ढेरों पत्र हम तक पहुँचते हैं और आज भी पहुँचे हैं। विवेकानंदपुरम फिजिकल क्षेत्र से पत्र आया है हरिवल्लभ शर्मा, रेखा शर्मा, रिंकल शर्मा, ट्विंकल शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का। इस गीत को सुनने की पेशकश हमसे की है श्रीराम कॉलोनी से प्रमोद भार्गव, आभा भार्गव, प्रांजल भार्गव, दीक्षा भार्गव और छोटी नन्नी परी और उनके परिवार के सदस्य और मित्रजनों का। नवाब साहब रोहट शिवपुरी से पत्र भेजा है अजय खेमरिया, विनोद खेमरिया, मनोरमा खेमरिया, गुंजन खेमरिया, पूजा खेमरिया और शरद खेमरिया के साथ उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों का। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में पत्र आया है कमलागंज शिवपुरी से सतीश शर्मा, अरुण शर्मा, मनोज शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, राधा शर्मा, गीता शर्मा,

और गुंजन शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्य और मित्रजन। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से देवेंद्र जैन, अरुण जैन, मनोज जैन, राधा वल्लभ जैन और उनके परिवार के सदस्य और मित्रजन इस गीत को सुनना पसंद करते हैं। तो आइए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आप ही की पसंद पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हम तक पहुंचा है और फरमाइश करते हैं विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से राजेंद्र मजे जी और उनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र गांधी कॉलोनी से आया है आलोक एम इंदौरिया और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों का। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में

पत्र भेजा है गांधी कॉलोनी से आलोक अस्थाना और उनके मित्रजनों और परिवार के सदस्यों ने। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में गांधी कॉलोनी से ही अगला पत्र आया है। जितेंद्र गौड़, मनोरमा गौड़, कैलाश नारायण गौड़, टीना गौड़ और परिवार के सदस्यों का। ग्वालियर बाईपास क्षेत्र शिवपुरी से गोपाल कृष्ण गौड़, प्रतिभा गौड़ और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद और फरमाइश पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: श्रोतो, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में इन दिनों तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। जिले में जल संरक्षण के लिए पुराने जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई की जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मेहगांव द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक वन खंडेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन तालाब पर सामूहिक श्रमदान किया गया। इस मौके पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे भी विभिन्न स्थानों पर टांगे गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रस्फुटन समिति सदस्य, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिकों एवं CMC LDP विद्यार्थियों की सहभागिता रही। जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी का कार्य प्रगति पर है। चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार ने कल भिंड एवं मुरैना जिलों के विभिन्न गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप खरीदी एवं तौल तथा अन्य प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि किसानों को खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर छाया, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भिंड जिले में बीते 5 मई से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुसार विकासखंड मेहगांव मुख्यालय पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। इस दौरान 5 जून तक शिविर के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में कबड्डी एवं वॉलीबॉल खेलों के साथ साथ योग और व्यायाम कर खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में कुपोषण मुक्त भिंड बनाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों पर क्रमानुसार कार्यवाही कर लाभ दिया जाए। उन्होंने सभी CDPO को प्रतिदिन फील्ड मॉनिटरिंग करने और सुपरवाइजर को साथ ले जाने के आदेश दिए। सुपरवाइजरों को भी निर्देशित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों पर रोजाना पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों की जानकारी लें और रजिस्टर में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में जन्मे हर बच्चे को डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन हितग्राहियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनके लिए विशेष कैंप आयोजित कर आधार बनवाने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही MM बॉस्क की एंट्री 100% पूर्ण करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने मातृवंदन योजना की विस्तृत समीक्षा की तथा सेम मेम बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बैठक के अंत में कहा कि पोषण स्तर में सुधार लाना और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना सभी का प्राथमिक दायित्व है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए टीम वर्क जरूरी है। आप सभी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें। कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, समस्त CEO जनपद पंचायतों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर गहन समीक्षा की और पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली, जिसमें विशेष रूप से जलगंगा संवर्धन अभियान 2025-26 और 2026-27 के तहत चल रहे खेत तालाब निर्माण पर जोर दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री तथा भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भोपाल स्थित निवास पर कल भिंड कोर कमेटी की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में भिंड जिले के समग्र विकास कार्यों, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक समीक्षा और विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के अनेक प्रमुख जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, विधायक अमरीश शर्मा, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कामना सिंह भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, संभाग प्रभारी अभय प्रताप, जिला प्रभारी अमीर सिंह पटेल, शैलेंद्र बरुआ एवं नगर पालिका अध्यक्ष ममता भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मेहंदी हसन की गाई हुई कुछ गजलें। आइए सुनते हैं मेहंदी हसन से ये गजल कार्यक्रम सुगम संगीत में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, अभी आप सब सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे थे मेहंदी हसन की कुछ गजलें। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल, और सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
1: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोता और रिश्ते तो बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन जीवन में एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बहुत अलग और ख़ास होते हैं। ये रिश्ते शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते, बस एहसास किए जा सकते हैं। रिश्ते हमें संरक्षित करते हैं, हमारा संबल और मनोबल होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारी ज़िंदगी में एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमारे मुँह से अनायास ही निकल जाता है, कुछ ख़ास और अनूठा है तुमसे मेरा रिश्ता। ये ऐसा रिश्ता होता है जो समय की कसौटी पर तपकर रूहानी बन जाता है। चाहे बचपन की सहेली हो, पति पत्नी हो, माँ बेटी हो, ननंद भाभी हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसका एहसास गहरा होता है, जिनसे हम दिल की बातें कर पाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़ास है तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड जैसा कि आप जानते हैं 0755। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: तुलसीराम जी, आज बोल रहा हूँ मालेगांव से।
1: तुलसीराम जी, जो आज का विषय है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, वो है कुछ खास रिश्ते, कुछ अनूठे रिश्ते। जो आपकी जिंदगी में कोई हो तो आप हमें बताएं।
2: खास रिश्ते?
1: हाँ, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो, जिनसे आप दिल की बातें करते हो, ऐसा।
2: देखो, रिश्ते तो अपने वाले के जो होते हैं ये कमजोर हो जाते हैं
1: जी,
2: अपने जो दोस्त के होते हैं, दोस्त
1: जी,
2: ये रिश्ता मैं अच्छा मानता हूँ। मेरा एक दोस्त है
1: जी, जी
2: मच में
1: जी,
2: वो उनका नाम आरसी जैन
1: जी। हाँ,
2: वो रिटायर पोस्टमास्टर है, उनकी उम्र है 82।
1: अरे वाह,
2: 82 उम्र है, लेकिन आज भी वो आकाशवाणी से इतने जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी का और उनका रिश्ता इतना पक्का है
1: जी,
2: कि बहुत ही पक्का है। वो उनके पास एक मर्फी रेडियो है, मर्फी
1: जी जी,
2: मर्फी रेडियो बहुत पुराना रेडियो है, वो आज भी उसको चलाते हैं, उसको अपने दिल से लगा रखते हैं उसके गानों को, पुराने गानों को।
1: तो ऐसे खास दोस्त जो आपके हैं, आप उनसे अपने दिल की बातें करते हैं, या आपकी मेंटल मैचिंग है उनसे जी?
2: बिल्कुल, हम मैं तो उनकी दिल की बात करता हूँ। मेरे लिए तो मेरा दोस्त का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, परिवार से भी अच्छा है।
1: ऐसा क्या खास था उनमें कि जो आपको इतने करीब ले आया उनके?
2: उनमें ये खासियत थी, वो तो है जैन परिवार से
1: जी जी,
2: और मैं हूँ ब्राह्मण परिवार से
1: जी जी।
2: ये दोनों का रिश्ता उन्होंने इतना रखा है कि क्षमा, कोई भी गलती हुई
1: जी जी
2: तो वो मेरी क्षमा कर देते हैं।
1: देखिए, ये जो दिल के रिश्ते होते हैं, इनमें कोई जात प्यात ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ होता हाँ, है तो एक अनुभूति, एक खास एहसास, है ना?
2: आपने बहुत सही बात बोली
1: जी,
2: के रिश्ते होते हैं
1: जी।
2: रिश्ते क्या है कि आजकल रिश्ते कमजोर हो गए मेरे।
1: जी हाँ, ऐसा तो है, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी हैं जो अपन को सुकून देते हैं।
2: अपन बोलते हैं कि जो अपना पड़ोसी होता है वो परिवार होता है
1: जी जी,
2: लेकिन आज परिवार में ही पड़ोसी बन गए।
1: बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमने जाना कि आपके पास भी कोई खास है जिसे आप दिल की बातें करते हैं। फोन करने के लिए
2: आरसी जैन है
1: जी जी,
2: मच में रहते हो
1: जी जी,
2: और रिटायर पोस्टमास्टर 82 साल हो।
1: चलिए, इतना लंबा रिश्ता यूं ही बरकरार रहे
2: जी। नाम?
1: मैं अनुराधा बोल रही हूँ जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी
0: जी,
1: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम। और हम आपको बता दें, हमारे आज का विषय है एक कोई खास रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में किसी का होता है, जो हमारे पास होता है। तो क्या कुछ खास है आपके पास ऐसा कोई?
1: जी हाँ,
0: सबसे पहले
1: मेरा
0: आप
1: नाम
0: मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ। किशन घी वाला जी,
0: किशन जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: घी समझते हैं ना,
0: जी
1: जो
0: जी
1: देसी
0: बिल्कुल।
1: घी जिसके परांठे बनाते हैं आप,
0: हाँ, तो कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दमोह से।
0: दमोह से।
1: दमोह मालूम है ना
0: जी जी बिल्कुल जानते हैं।
1: आप कौन बोल रहे हैं
0: मैं
1: यहाँ?
0: अनुराधा बोल रही हूँ और कार्यक्रम है
1: हाँ
0: बात आपकी, गीत हमारे।
1: हाँ जी, जो विषय आपने पूछा है कि
0: जी
1: कोई ऐसा बताएं जो दिल से जुड़ जाता है, कुछ ऐसा
0: जी
1: पूछा
0: हाँ,
1: ना आपने। हाँ
0: चाहे कोई वो बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत करीब हों, और
1: हाँ
0: इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसा कोई खास होना बहुत ज़रूरी भी होता है ना?
1: हाँ इसमें जी मेरा ये कहना है कि
0: जी
1: अपने आप ही खास बन जाते हैं जीवन में, जीते जीते ना, जो
0: जी
1: आप कह
0: जी
1: रहे हैं ना कि
0: जी
1: खास होना जरूरी होता है, वो अपने आप बन ही जाते हैं खास। मैं चाहे तो अपने मित्र का नाम लूं,
0: जी
1: चाहे तो अपने बेटे का नाम लूं, चाहे तो अपने बहनोई का नाम लूं, कुछ
0: जी
1: ऐसे एक दो नहीं, तीन चार आ गए हैं मेरी जिंदगी में जो
0: जी
1: कि विशेष हो गए हैं, खास हो गए हैं, और जिनको हम हमेशा याद भी रखते हैं और उनका एहसान भी मानते हैं
0: जी
1: कि जिनके कारण हम आज इस योग्य हैं कि एक समाज में अच्छी स्थिति में हैं, समाज में भी, व्यापार में भी, और साहित्य में भी थोड़ा
0: जी बिल्कुल
1: बहुत, तो एक जो अपना स्टेटस हमारा बन गया है, तो उसमें बहुत सारे दो चार पांच लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम, जिनके सहयोग से, जिनकी मित्रता से
0: जी
1: हम
0: जी
1: इस योग बने हुए हैं। अगर आप कहें तो किसी का नाम लूं
0: बिल्कुल, आप यदि चाहें बोलना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि
1: जी।
0: ये रिश्ते
1: मेरा मित्र है
0: किसी
1: प्रमोद कुमार सेन, आपके भोपाल का ही है,
0: जी।
1: वो मेरा जीवन से मेरे साथ पढ़ता रहा है, स्टार्टिंग से, प्राइमरी से,
0: चलिए
1: और आज मैं 77 ईयर्स का हूँ और वो भी 77 ईयर्स का, लेकिन हम लोग बराबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
0: देखिए ना,
1: सुख दुख
0: भरोसा
1: में एक
0: है
1: दूसरे के पास
0: आपकी इस
1: पहुँचते हैं।
0: दोस्ती में, कितना भरोसा है कि इतने लंबे वक्त से आप साथ हैं,
1: जी,
0: और
1: ये
0: ईश्वर से कामना
1: एक
0: करते हैं कि
1: सत्य
0: आप
1: है।

0: यूं ही आगे तक जब तक सांसें हैं तब तक साथ रहिए, खुश रहिए, है ना।
1: जी जी
0: चलिए,
1: हाँ
0: धन्यवाद आपका, आपने कॉल किया।

0: हेलो सजीव फोन इन कार्यक्रम।
1: हाँ जी, हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल
1: नमस्ते।
0: रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: जी, मैं श्रीपाद जाकड़े बोल रहा हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से। जी
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज का विषय
1: धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि आज हमने विषय रखा है कुछ अनूठा और कुछ खास रिश्ता, जो हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं, एक दो या तीन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते जो कुछ खास हैं हमारे लिए, जिनसे हम अपनी बातें करते हैं और जिनका होना ही हमारे लिए बहुत खास होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई है?
1: नहीं, ऐसा तो कोई नजदीकी तो नहीं है मैडम, पर
0: जी
1: ऐसे तो दोस्ती में है। मतलब दोस्त तो अगर ऐसे है,
0: जी
1: मतलब कि जो मतलब ऐसे है मतलब।
0: हाँ, जिनसे लगता है कि जब कभी आप किसी परेशानी में होते हैं या किसी समस्या में होते हैं तो आप फ़ोन करके उनसे बात करके पूछ लेते हैं, या वो
1: हाँ
0: खुद
1: जी,
0: अपना समझ के बता देते हैं, उनसे कोई डर नहीं रहता कि ये फैला देंगे या इसका गलत यूज़ करेंगे।
1: हाँ जी, इसमें क्या है मैडम कि
0: जी
1: जैसे ऐसे लोग बहुत मतलब अब बिरले ही लोग होते हैं ऐसे कि जो मतलब अपने को समझ सकते हैं।
0: जी
1: हाँ, और मतलब समय आने पे वो अपना हाथ थामते हैं।
0: जी
1: मतलब कुछ मतलब संकट आता है तो मतलब वो अपने को दिलासा देते हैं, या
0: जी जी
1: फिर जो भी है कोई मदद करते हैं। तो ऐसे लोग जरा कम ही रहते हैं, पर यही अनुभव मतलब हमारे ऐसे है कि हम एक्चुअली ब्लाइंड है। तो
0: जी जी
1: हेलो,
0: जी जी सुन रही हैं आप, बताइए।
1: तो हमारे मतलब अब हम यहाँ आश्रम में रहते हैं पुणे में। तो
0: जी
1: अभी तक की लाइफ में जो जितने भी संकट आए बड़े बड़े, तो ऐसे ऐसे समय में बहुत कम ही लोगों ने हमारा मतलब साथ दिया है। मतलब या
0: जी
1: कम से कम हमारी बात शेयर की है, जो जो मतलब समझ सके हैं हम हमको ऐसी बात है। तो
0: चलिए, कोई तो है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा जो आपको समय पर आपके साथ
1: हाँ
0: खड़ा
1: जी,
0: होगा।
1: हाँ जी है ना।
0: जी, चलिए, आपसे बात
1: पर
0: करके बहुत अच्छा लगा और आप यूं ही हमें कॉल करते रहें, धन्यवाद।
1: तो इसमें कोई गाना वगैरह है क्या मैडम जी?
0: जी, ये आज का कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारी, जिसमें हम एक विषय रखते हैं जिससे आपसे बात करते हैं। और
1: हेलो,
0: जी
1: एक सेकंड,
0: जी
1: इसमें तो ये कल हमको सुनने को मिलेगा ना?
0: जी आप कल सुन सकते हैं, आज जो रिकॉर्डिंग है कल इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, कौन बोल रहे हैं?
1: जिला मिर्जापुर का सभाकांत बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, एक बार फिर से धीरे बताइए।
1: जिला मिर्जापुर से सभाकांत बोल रहे हैं।
0: शिवाकांत
1: जी,
0: शिवाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं, इसमें कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा है।
0: जिला कौन सा बताया आपने?
1: मिर्जापुर।
0: मिर्जापुर
1: जी,
0: आपको हम बता दें कि आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और इसमें हमने विषय रखा है ऐसा कोई खास जो आपके बहुत पास हो और आप उनसे बहुत जी जी अरे बहुत अच्छी बात है। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन ऐसा होता है जो हम जिनसे बहुत अपने दिल की बातें शेयर कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी,

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की हमारी। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मुन्ना के भट्ट पलोहवाड़ा, जिला नरसिंहपुर से मुन्ना के भट्ट बोल रहे हैं, पलोहवाड़ा।
0: कितने दिनों बाद आपने फोन लगाया?
1: डेढ़ महीना हो गया हूँ मैडम जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: पलोहवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवाड़ा, मुन्ना के भट्ट
0: जी। तो हम आपको बता दें, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कुछ खास विषय पर
1: जी।
0: तो आज का जो विषय है वो है कोई ऐसा खास रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो और आप उनसे बात करते हैं अपने दिल की, अपने कभी समस्या हो तो उनसे बात करके आप मतलब शांत हो जाते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, या उनका होना आपके लिए बहुत खास होता है। ऐसा है कोई आपकी जिंदगी में रिश्ता?
1: जी मैडम जी, सबसे बड़ा रिश्ता तो दोस्तों का लगता है, दोस्त मामा।
0: रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, माँ बहन, भाई भतीजा, लेकिन आप कोई एक को ऐसा रहता है जो देख के लगता है कि हाँ ये मेरा खास है, या हम इससे बात कर सकते हैं खुलकर, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, या वो
1: जी दोस्ती का रिश्ता लगता है मैडम जी सबसे अच्छा।
0: तो कोई है आपके पास? दोस्ती में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कोई एक खास?
1: एक दो ऐसे रहते हैं, हृदय अजीज रहते हैं।
0: हाँ हाँ, जिनसे लगता है खुश हो जाता है, जिनका आने से ही मन खुश हो जाता है।
1: जी हाँ
0: जी,
1: जिस दिन से बात या बात करो या ना करो, आज कल कहते
0: हैं दूरियां कितनी भी हों, लेकिन आप जब उनसे बात करते हैं तो मन खुश हो जाता है, या हमारे बीच में भेदभाव नहीं रहता कि वो अमीर है हम गरीब हैं, या कोई भी किसी भी तरह की जो वो रहती है सीमा, वो नहीं रहती है ना
1: जी।
0: तो बताए
1: सब कुछ मैडम जी, बचपन में होता है अमीरी गरीबी, तो कोई अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं रहता बचपन में, लेकिन बड़े हो जाते तब वहाँ में दिखाने लगा था अमीरी गरीबी।
0: लेकिन फिर भी कोई तो रहता है ना आपके पास, होगा ऐसा कोई जो आपके दिल की बातों को समझे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप यूं ही हमसे बात करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानी तली छतरपुर मधुपुर से रशीद अहमद खान बोल रहा हूँ। नमस्ते मैम।
0: राशिद भाई कैसे हैं?
1: एकदम सही एकदम सही। जब आप लोग आशीर्वाद एकदम
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: एकदम सही है। आप लोगों का आशीर्वाद है। गर्मी के सीजन का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया से रेडियो सुनते हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं।
0: आज हमने जो विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, उसमें है कुछ अनूठा और कोई खास रिश्ता। जैसे कि हमारा रिश्ते तो बहुत होते हैं, दोस्त भी बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे हम बहुत, जिसके पास होते हैं हम बहुत। और जी
1: भाई घर परिवार तो रहते ही है, पर बाकी आप लोग सब लोग हैं, आकाशवाणी है,
0: चलिए
1: सभी तो खास हैं। नहीं, लोग तो सब खास हैं हम लोगों।
0: नहीं, जब कभी हमें तकलीफ होती है तो वो हम उससे बात कर लेते हैं या उससे कोई राय ले लेते हैं या वो आकर हमारी बिना किसी शर्त के हमारी सहायता कर लेता है, ऐसा कुछ मैं पूछ रही थी आपसे।
1: हाँ जी बिल्कुल। जो परिवार के बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो उनका सानिध्य जो मिल जाता है तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा परिवार ही हमारा साथ है और खास है, इससे पता चलता है। धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम। थैंक यू।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत
1: हेलो
0: हमारे। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, सागर से बोल रहा हूँ, चंद्रेश को।
0: सागर से कितने दिनों बाद लगाया चंद्रेश जी?
1: दीदी मेरा तो अब क्या बताऊँ, मैं तो हर 15 दिन में ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा मानता हूँ कि 1.5 महीने बाद लगा हुआ हुआ होगा मेरा।
0: कैसे हैं आप?
1: बस दीदी आप सबकी दुआएं हैं और आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं,
0: जी जी,
1: इतनी भीषण गर्मी में भी उन कार्यक्रमों को सुनकर एक सुखद एहसास और ठंडक महसूस हो रही है।
0: जी बहुत अच्छा चंदेश जी, आज हमने विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, कुछ ऐसे रिश्ते जो हमारे बहुत खास होते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं?
1: देखिए रिश्ते दीदी क्या है, रिश्ते हमारे बनाने से बनते हैं दीदी, मेरा ऐसा मानना है।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर रिश्तों को अगर हम ज्यादा अहमियत देंगे तो ये मानिए दीदी जी के सामने वाला भी उतना ही हम लोग को अहमियत देगा।
0: जी,
1: क्योंकि आज रिश्ते देखने में ऐसा आ रहा है दीदी कि रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए हो गए हैं दीदी। अब
0: रिश्ते बहुत हैं, दोस्त भी बहुत हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो आपके जिंदगी को खुशी से भर देता है।
1: हाँ दीदी, ऐसे तो देखिए मैं विगत करीब 50 या 55 वर्षों से रेडियो आज ही सुनता चला आ रहा हूँ।
0: जी,
1: रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से जो हमारे रिश्ते बने हैं
0: जी,
1: वो आज भी हम लोगों के लिए बहुत यादगार हैं, मददगार हैं, और समय समय पर हमें जब कोई परेशानी कोई कठिनाई आती है
0: जी,
1: तो श्रोताओं के द्वारा हम लोगों को जब वो मोटिवेट करते हैं, जब श्रोता हम लोगों के लिए
0: जी जी,
1: तो हम लोगों को एक अलग ऐसा एहसास नहीं हो पाता कि हम किसी कष्ट में हैं या किसी तकलीफ में हैं, तो श्रोताओं के द्वारा जो हम लोगों के लिए जो सांत्वना या जो दिलासा मिलती है और जो सलाह मिलती है
0: जी जी,
1: वो हम लोगों के लिए जीवन में एक बहुत कारगर से दोती और एक अहमियत रखती है हम लोगों के लिए। तो श्रोता रेडियो से जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं
0: जी,
1: उन श्रोताओं को मैं अहमियत ज्यादा दूंगा और

0: उनसे बहुत कुछ हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है।
1: चंद्रेश जी, आपने हमसे बात करी और हमारे बहुत सारे श्रोता लाइन पर हैं, आप से हमारी फिर बात होगी। आपने आज इतनी अच्छी बात करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो।
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहा है?
1: मैं उपेंद्र चौधरी बात कर रहा था
0: जी। उपेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सिवनी जिले से।
0: सिवनी से। तो हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज हमने विषय रखा है कुछ खास रिश्ते जो हमारे दिल के पास होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप बहुत खास मानते हैं?
1: मैडम जी, सबसे पहले तो रिश्ता होता है माँ का
0: जी,
1: उससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा कि माँ आपकी हर बात को बहुत समझती है, अच्छे से जानती है
1: जी।
0: जी,
1: हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतें पूरी करना माँ के हाथ में रहता है, और वो माँ ही करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता
0: जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से बातचीत भी करेंगे। छठवां राज्य वित्त आयोग कल से ग्वालियर और चंबल संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत भवन में 22 से 24 मई तक संतवाणी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन शाम को भक्ति संगीत पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड तथा मालवा निवाड़ में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। आपकी पसंद के गीत हम आपको सुना रहे हैं। फिल्म लम्हे से गीत सुनेंगे लता मंगेशकर और ईला अरुण के स्वर में। गीतिका आनंद बख्शी ने, संगीतकार शिवहरी। फरमाइश हमें आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेरे सनम से। गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले ने, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश इस गीत के लिए आई है जयराज प्लॉट राजकोट से। श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक, अभिजीत और सपना मुखर्जी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुदाई से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से, श्रोता है राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी के स्वर में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है देवरी भाटापारा से। श्रोता है गन्नू लाल, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और श्री गणेश। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म हमराज से। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। फरमाइश हमें आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। श्रोता है प्रभाकर और आरती। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: नसंसनी ना उत्तेजना न शोर दिन रात न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक जरूरी सूचना। संजय कुमार, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त आसूचना एवं सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदाय के बीच बैमन उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, वाहन रैली, कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, विस्फोटक सामग्री एवं किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।
2: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: श्रोतागण को मेरा सप्रेम नमस्कार। पंचतंत्र के मित्रभेद प्रकरण को आप सब सुन रहे हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। संजीवक और पिंगलक की मित्रता को तोड़ने के लिए दमनक योजना बनाता है, जिसके अनुसार पिंगलक संजीवक से युद्ध ना करे और जंगल छोड़कर भाग जाए। दमनक संजीवक को टिट्टिब की कथा सुनाता है।
1: किसी समुद्र के किनारे टिटेरियों का एक जोड़ा निवास करता था। कुछ दिनों बाद

0: टिटबी ने गर्भ धारण किया। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने पति से कहा,
1: कांत, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अतः आप किसी ऐसे स्थान की खोज करें जो निर्विघ्न हो और जहां पर मैं शांतिपूर्वक अपने अंडे दे सकूं।
2: प्रिय, हम समुद्र के किनारे इतने रमणीय स्थान पर रहते हैं, ये जगह हमारी परिचित है। तुम्हारे प्रसव के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान और क्या होगा? तुम्हें यहीं प्रसव करना चाहिए।
1: आपकी बात मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आया करता है, वो बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाता है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान की खोज कीजिए, कहीं मेरे बच्चों को यहाँ कोई हानि हो जाए, फिर हम क्या करेंगे?
2: नहीं भद्रे, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है।
3: उस समुद्र का सामर्थ्य नहीं, वो मेरे बच्चों को बहा ले जाए।
1: मैं जानती हूँ स्वामी, आप वीर हैं, परंतु समुद्र के समक्ष अपनी वीरता का परिचय दिखाना मूर्खता है।
2: इस तरह शंका करके तुम मेरे प्रेम का अपमान कर रही हो प्रिय। तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो, पराजय और तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग कर कायर शिशु को जन्म देकर यदि स्त्री स्वयं को पुत्रवती समझती है तो बांझ किसे कहेंगे?
4: टिप-टिप के अहंकार भरे वचन को सुनकर समुद्र ने सोचा, इस तुच्छ पक्षी को कितना अधिक घमंड है। ये भी है कि आकाश के गिरने की आशंका में टिटहरी अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है। वो सोचता है गिरते हुए आकाश को अपने पैरों से रोक लेगा। तो समुद्र ने उस टिटहरी को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसके अंडों का अपहरण कर लिया। जब टिटिबी को प्रसव स्थान खाली मिला, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। अपने पति से बोली,

0: कहा था कि यहाँ से दूर निकल चले, किंतु अपनी मूर्खता और घमंड के कारण तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।
1: भद्रे, भद्रे, क्या तुम मुझे कायर समझती हो? मेरे बुद्धि बल को देखो, अभी अपनी चोंच से इस पापी समुद्र को ही सोख लेता हूँ।
0: परंतु समुद्र के साथ तुम्हारी समता ही क्या है जो उसके साथ युद्ध करने जा रहे हो? तुम्हारा उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। अपनी तथा शत्रु की शक्ति को जाने बिना ही जो युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो आग की ओर बढ़ने वाली पतंग की तरह आत्मविनाश का कार्य करता है।
1: नहीं प्रिय, नहीं, ऐसी बात ना कहो। जिनके पास उत्साह एवं विश्वास रूपी शक्ति है, वे शक्तिहीन होते हुए भी अपने शक्तिशाली शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। तुम देखना, मैं अपनी चोंच के द्वारा इस पापी समुद्र के संपूर्ण जल को पीकर इसे शुष्क बना दूंगा।
0: हे कांत, 900 नदियों को लेकर गंगा जिससे सतत मिलती रहती है, और सिंधु नदी भी 900 नदियों को लेकर मिलती है, उन 1800 नदियों द्वारा सतत भरे जाने वाले विशाल समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे सुखा पाओगे?
1: प्रिय, जब तक हिम्मत के साथ कोई अपने प्राणों की बाजी लगाकर पुरुषार्थ करता है, वो लड़ाई भी निष्फल नहीं होती।
0: यदि तुमने समुद्र के साथ विग्रह करने का सोच ही लिया है, तो अन्य पक्षियों को भी बुला लो और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर ही उसके साथ युद्ध करो।
1: अवश्य प्रिय, जो तुम कहती हो वही करूंगा। अपने मित्रों के साथ ही समुद्र का अंत करूंगा। वक्त, सारस, मयूर सभी को बुलाऊंगा।

0: अब उस टिटहरी ने अपने सारे साथियों का आवाहन किया, पूरी कथा सुनाई, परंतु सबने ये राय दी कि समुद्र को दंड देने में वो असमर्थ हैं। तभी मयूर ने सलाह दी कि क्यों ना अपने स्वामी पक्षीराज गरुड़ से निवेदन करें। ये सुनकर सभी पक्षियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से गरुड़ के पास जाकर निवेदन किया।
1: महाराज, अनर्थ हो गया, पक्षियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप हमारे स्वामी हैं, आपके रहते हुए मुझ जैसे सदाचारी और निर्दोष टिटहरी के अंडों को समुद्र ने चुरा लिया। यदि यही स्थिति बनी रही तो समुद्र स्वेच्छा पूर्वक अन्य पक्षियों को भी मार ही डालेगा।
2: अरे, तुम लोगों ने इस बात की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? मैं तो सोच रहा था तुम सब अपने अपने स्थान पर सुख पूर्वक होगे।
1: नहीं प्रभु, हम सब बड़े दुखी हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए।
2: आप सब निश्चिंत रहें, मैं उस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उसे सोख डालूंगा।
3: गुरुवर को मेरा प्रणाम।
2: अरे, आप तो श्री भगवान के दूत हैं, कहिए क्या संदेश है?
3: गरुड़ जी, स्वयं नारायण ने मुझे भेजा है। देवों के कार्य से भगवान अभी अमरावती जाने वाले हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलें।
2: दूत, मेरे जैसे कुभृत्य को रखकर भगवान क्या करेंगे? उनसे जाकर कहिए वो मेरे स्थान पर किसी अन्य वाहन को रख लें, और प्रभु से मेरा प्रणाम भी कह देना।
3: ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर?
2: उचित ही कह रहा हूं। जो स्वामी सेवक के गुणों की कद्र नहीं करता, उसकी सेवा में रहना सेवक की मूर्खता है।
3: गुरुवर, इससे पूर्व कभी भी भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का उच्चारण आपने नहीं किया था। प्रभु ने कब आपका अपमान किया है जो आप इतने विगलित हो रहे हैं?
2: श्री भगवान का आश्रित होने के कारण ही समुद्र ने मेरी प्रजा में से एक टिटहरी के अंडों की चोरी की है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसलिए आप अविलंब जाकर भगवान से मेरी प्रार्थना कह दें।
4: वत्स गरुड़।
2: भगवान, आप स्वयं उस तुच्छ सेवक के पास आए हैं? मुझे क्षमा कर दें प्रभु, अज्ञानवश मैंने आपका अपमान किया है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे उचित दंड दीजिए।
4: नहीं नहीं वत्स, मैं तुमसे तनिक भी कुपित नहीं हूँ। क्या हमें ज्ञात नहीं कि आप हमारे कितने भक्त हैं? आप मेरे साथ चलें, मैं टिटहरी के अंडों को अविलंब समुद्र से लेकर देता हूं।
2: जो आज्ञा प्रभु।
5: दुरात्मन समुद्र, तत्काल टिटहरी के अंडों को वापस करो, अन्यथा बाण से तुम्हें सुखाकर बंजर भूमि बना दूंगा।
0: भयभीत समुद्र ने तुरंत अंडों को लौटाकर गरुड़ से क्षमा मांग ली और भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ अमरावती रवाना हो गए। इस कथा को सुनकर संजीवक ने दमनक से कहा,
6: अम्मा, मित्र दमनक, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है? वो मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझ पर कभी अप्रसन्न नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ।
7: भद्र, इसमें जानने की क्या बात है? प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे विश्वास के लिए यही पर्याप्त है कि यदि वो तुम्हें देखकर भ्रिकुटियां चढ़ाकर ओटों को जीभ से चाटे तो समझ लेना वो तुमसे रुष्ट है। इस बात का ध्यान रखना कि पिंगलक को ये खबर ना हो कि मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है। यदि हो सके तो संध्या के समय तक यहां से पलायन कर जाओ।
8: आ गए दमनक भाई। मैं तो चिंता ही कर रहा था।

0: मैंने अपनी मिथ्या बातों के द्वारा जो भेद डाला है, भविष्य में आप उन्हें एक साथ नहीं देख पाएंगे।
1: ये तुमने ठीक नहीं किया। दोनों स्नेह पूर्वक सानंद रहते थे, आपने उन्हें कोप के समुद्र में फेंक दिया। सच है कि सीधे साधे लोगों को दुख देने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया, परंतु अब सहमति और समर्थन संभव नहीं।
0: अरे, आप नीत शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: जो व्यक्ति शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही शांत नहीं करता, वो बाद में पछताता है। क्यों, आपको याद नहीं, हमारा मंत्री पद छुड़ाने वाला भी संजीवक है। मैंने उसे अभयदान देकर पिंगलक के पास पहुंचाया, उसकी मित्रता करवा दी, फिर भी उसने हमें मंत्री पद से हटवा दिया। देव, मैंने विवश होकर उसके वध का उपाय किया है।
1: परंतु दमनक, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
0: मेरे इस उपाय को आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा, आप कोई संदेह ना करें।
1: पता नहीं भैया क्या होने वाला है।
0: करकट जी, आप तो व्यर्थ में घबरा रहे हैं। मेरी माने तो आप महाभोज की तैयारी कीजिए। भोजन के साथ साथ हमें मंत्री पद की भी प्राप्ति होने वाली है। अब इतने सारे लाभ वाले उपायों को मैंने सिद्ध किया है, अपनी मूर्खता के कारण आप इसे समझ नहीं रहे हैं और मुझे दोषी मान रहे हैं।
1: अपने को अत्यधिक बुद्धिमान समझने की भूल मत करो। आगे आगे देखो क्या होता है।
2: अम्मा, ये मैंने क्या कर डाला? स्वयं शाक भक्षी होते हुए भी मांस खाने वाले के साथ मित्रता की और उसका दास बन गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आता। हां, एक उपाय है, पिंगलक के पास चलता हूं, हो सकता है शरणागत समझकर वो मेरी रक्षा करे।
3: ये सोचकर संजीवक पिंगलक के पास गया। पिंगलक को एक चट्टान पर बैठा देखकर डर गया। उसे दमनक की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। पिंगलक ने भी उसे देखा और तत्काल संजीवक पर टूट पड़ा। पिंगलक के तीखे नखों के आघात से आहत होकर संजीवक ने भी अपने सींगों से उसके उदर को फाड़ डाला। उधर करकट और दमनक छुपकर पूरी घटना देख रहे थे।

0: मूर्ख दमनक, इन दोनों मित्रों में विरोध उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी नीत से स्वामी का विनाश हो रहा है। उनके मरने में अब संदेह नहीं। किस बुद्धि से तुम मंत्री बनना चाहते हो? दंड में विश्वास रखने वाली तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है। नीच पुरुष सिर्फ दूसरों का कार्य बिगाड़ना ही जानते हैं। वैसे तुम जैसे मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ?
1: अब मैं क्या करूं?
0: दूसरों को विपदा में देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति विनाश की परवाह नहीं करता। सुनो दमनक, किसी नगर में धर्म बुद्धि तथा पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ थे, परंतु दोनों के नाम के अनुसार स्वभाव में भी बहुत

0: तंत्र था। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा,
1: हे भगवान, कैसे दिन कटेंगे? मेरे पास तो सुख सुविधा के कोई भी साधन नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं। मैं मूर्ख और दरिद्र दोनों हूं। क्यों ना विदेश जाकर धन उपार्जन करूं? मैं धर्म बुद्धि को भी साथ ले लेता हूं, ये भी कमाएगा। बाद में इसे ठग कर इसकी भी कमाई ले लूंगा। कल ही मैं उससे बात करता हूं।
2: आहा, आज तो आनंद आ गया। वाह, बड़े दिनों के बाद लस्सी बनी है, क्या स्वाद है। वाह वाह,
3: मित्र धर्म बुद्धि, अकेले अकेले ही आनंद ले रहे हो भाई? अपने भाई जैसे मित्र को याद नहीं किया?
2: आओ मित्र, आओ आओ आओ, मैं अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था।
3: चलो, मेरी याद आई तो सही।
2: ऐसा ना कहो मित्र, मैं कुछ व्यस्त था, परंतु याद तुम्हें प्रतिदिन करता था। अच्छा, अब छोड़ो, ये लो ठंडी लस्सी पीकर दिमाग को ठंडा कर लो। मित्र पर इतना क्रोध ठीक नहीं।
1: देखो धर्म भाई, इस छोटे से नगर में रहकर यदि हमारा जीवन यूं ही बीत जाए तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में किन बातों को याद करेंगे?
2: मित्र, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा विस्तार से बताओ।
1: विस्तार से क्या बताना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्यों ना विदेश चलकर हम दोनों कोई व्यापार करें।
2: बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, एक शुभ मुहूर्त देखकर और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़ेंगे।
4: और फिर दोनों ने शहर जाकर खूब धन कमाया। धर्म बुद्धि के प्रभाव से इधर उधर घूमकर पाप बुद्धि ने भी खूब धनोपार्जन किया। कुछ माह बाद दोनों अपने कमाए हुए धन को लेकर प्रसन्न एवं उल्लसित मन से घर को लौटने लगे।
1: वाह, धन कमाकर तो आनंद आ गया, पर धर्म बुद्धि के धन को भी अगर हथिया लूं तो क्या बात है।
2: क्या सोच रहे हो मित्र, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो।
1: मैं सोच रहा था इस संपूर्ण धन को लेकर घर चलना ठीक नहीं, कुटुंबजन या भाई बहन मांगने लगेंगे।
2: तो फिर क्या करें पाप बुद्धि?
1: मेरी मानो तो यहीं घने जंगल में इसे गाड़ देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर घर चलें। फिर जब जैसी आवश्यकता होगी धन को खोद कर ले लेंगे।
2: ठीक है मित्र, जैसा उचित समझो करो। आओ, इसके लिए गड्ढा खोद लेते हैं।
1: हाँ।
2: ऐसा। और थोड़ा सा।

0: धन को जमीन में गाड़ने के बाद वे दोनों अपने अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात को पाप बुद्धि ने वन में जाकर उस गाड़े हुए धन को निकाल लिया और गड्ढे को भरकर चुपचाप लौट आया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि से बोला,
1: मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, धन के अभाव में हम दुखी हैं। चलो उस स्थान पर चलकर कुछ धन खोद लाया जाए।
2: हाँ चलो। हाँ यही तो था।
1: हाँ, हाँ,
2: यही तो वो पेड़ है। यही
1: खोदो,
2: स्थान
1: खोदो,
2: है
1: खोदो।
2: खोदते हैं।
1: बस बस बस थोड़ा सा और खोद लेते हैं।
2: अरे अरे यह क्या
1: है?
2: ये खींचो खींचो। अरे ये तो खाली है। अरे
3: अरे धर्म बुद्धि, अधिक ढोंग ना करो। इस धन को तुमने ही चुराया है। मैं पहले ही संदेह कर रहा था, ये गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ जान पड़ता था।
4: दुरात्मन, ऐसी बात कभी ना कहना। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी नहीं करता हूँ।
3: अरे छोड़, बड़े देखे तेरे जैसे धर्मात्मा, नाम की आड़ लेकर मुझे ठगने की चेष्टा व्यर्थ है। चुपचाप मेरे धन को लौटा दे।
4: पापी, जो धर्म में विश्वास करता है वो दूसरों के धन को धेले के समान जानता है।
3: अपने धर्म को अपने पास रख, शीघ्रता से मेरा धन मुझे दे दे, अन्यथा मैं न्यायालय जाऊंगा।
4: न्यायालय का डर किसे दिखाता है, मैं स्वयं ही तेरे साथ चलता हूँ।
0: इस प्रकार दोनों व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए न्यायालय पहुँचे और परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयत्न करने लगे। अंत में ये तय हुआ कि वृक्ष देवता की गवाही ली जाए। पाप बुद्धि ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र घर गया और अपने वृद्ध पिता से बोला,
1: पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के समस्त धन को चुरा लिया है। अगर आप चाहें तो वो धन हमारे पास स्थिर रह सकता है।
5: धन चुराकर तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। अब लग रहा है कि मेरा पुत्र वयस्क हो गया है। परंतु शीघ्र बता कि मुझे करना क्या है जिससे हम उस धन को अपना बना सके।
1: हे तात, कल प्रातःकाल न्यायाधीश गण मुझे और धर्म बुद्धि को लेकर उस वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां हमने धन छुपाया था। आपको वृक्ष के कोटर में छुपकर बैठ जाना है और पूछने पर बताना है कि ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है।
5: ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज रात में ही जाकर पेड़ के कोटर में छुप जाता हूं।
1: पिताजी, आइए आइए आप सब आइए। ये है वो वृक्ष। आप इस वृक्ष देवता से पूछें, हे वन देवते, आपने तो सब देखा है, आप ही बताएं हम में से चोर कौन है।
6: सज्जनों, आप सब ध्यान से सुने, मेरे नीचे छिपाए गए धन को धर्म बुद्धि ने चुराया है।
2: ये झूठ है, झूठ है, ये नहीं हो सकता।
3: क्या झूठ है, क्या वृक्ष देवता भी असत्य बोलेंगे? अब तो सच सबके सामने आ गया है।
0: उधर न्यायाधीशों ने आश्चर्य से पूरे दृश्य को देखा और सुना, फिर धर्म बुद्धि को चोरी का दंड देने पर विचार विमर्श करने लगे। इसी बीच धर्म बुद्धि ने शमी वृक्ष के उस कोटर में आग लगा दी।
2: अरे अरे जल गया, अरे मारे, अरे अरे अरे बचाओ, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे बचाओ, जल गया।
0: पाप बुद्धि का पिता कराहता हुआ कोटर से बाहर निकल आया। फिर क्या था, पाप बुद्धि से धन छीन कर धर्म बुद्धि को दे दिया गया। अब इस कथा को सुनकर करकट ने दमनक से कहा,
7: दमनक, तुमने पाप बुद्धि की तरह स्वार्थ सिद्धि का उपाय तो सोचा, किंतु होने वाली हानि पर विचार नहीं किया। तुम अत्यंत तुच्छ सोच वाले हो, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना।
0: इधर करकट और दमनक वाद विवाद में व्यस्त थे और उधर संजीवक पिंगलक के साथ युद्ध कर रहा था। पिंगलक के प्रखर नखों के आघात से आहत होने के कारण संजीवक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे निर्जीव देखकर पिंगलक बहुत दुखी हुआ।
8: मैंने निर्दोष संजीवक को मारकर अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं अपनी सभा में सदैव उसकी प्रशंसा करता रहा हूं, अब मैं उन सभासदों के सामने क्या उत्तर दूंगा?
9: देव, आपकी ये नीति अत्यंत कायरतापूर्ण है। आप एक राजद्रोही और शाकाहारी जीव को मारकर इस प्रकार शोक कर रहे हैं, राजाओं को ये बात शोभा नहीं देती।
0: इस प्रकार दमनक के समझाने पर पिंगलक ने संजीवक के मरण संबंधी शोक को छोड़ दिया और फिर दमनक को मंत्री पद देकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्रोतागण, पंडित विष्णु शर्मा ने जो 5 प्रकरण बनाए उनमें से प्रथम प्रकरण मित्र भेद यही समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे मित्र संप्राप्ति, परंतु अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का ये 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार, तकनीक आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

नमस्कार सखियों, महिला सभा में आप सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी श्रोता सखियों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला सभा कार्यक्रम लेकर आज हाजिर हूँ मैं, संयोगिता जोशी। आइए शामिल होते हैं कार्यक्रम के माध्यम से इस आने वाले जश्न में। आज आप सुनेंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ जानकारियां भी। बहुत खुशी होती है सखियों जब आकाशवाणी प्रांगण में महिलाओं को कार्यकर्ता देखते हैं। हर विभाग में जिम्मेदारी से कार्य करती दिखती हैं ये महिलाएं, और आज तो लगभग हर फील्ड में महिलाओं ने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने कार्य स्थल पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बड़ी भूमिका के लिए बधाई की पात्र हैं हमारी सभी वो बहने। दरअसल एक महिला में नेतृत्व क्षमता अधिक होती है प्राकृतिक रूप से, और जो कार्य उसने अपने ऊपर लिया है वो पूर्ण करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। आगे बढ़ने की उसकी जो चाह है ना, उसने उसे दोहरी भूमिका निभाने में मजबूती दी है। यानी घर के काम के साथ साथ माँ के दायित्व के साथ साथ वो अपने कार्य स्थल पर भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। सखियों, हम यही चाहते हैं कि हर वर्ग की महिला हर क्षेत्र में आगे आए, चाहे वो शिक्षित हो या ना हो, अपने स्तर पर वो अपनी इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए हौसले के साथ आगे बढ़ती चलें। यूं ही नहीं हासिल किया हमने ये सफर, यूं ही नहीं तय किया हमने ये सफर, मुश्किलों का सामना भी किया है, मुश्किलों को तोड़ा भी है, और मुश्किलों से लड़कर हम आगे भी बढ़ी हैं। मेरे

गीत के बाद आगे बढ़े से क्यों आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। योजना सरकार की वो पहल है जिसमें गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रूपए की राशि दी जाती है, दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक में डाले जाते हैं। उद्देश्य ये है कि पोषण में सुधार हो गर्भवती महिलाओं के और भुगतान की जो भरपाई है वो हो सके। हाँ, पात्रता के लिए महिला की आयु 19 वर्ष होनी चाहिए, महिला सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए, गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य है। तो प्यारी सखियों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लीजिए और स्वस्थ प्रसव की इस मुहिम को बढ़ावा दीजिए। सखियों, आज 19 मई है और आज के दिन विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड फेयर प्ले डे के रूप में भी हम जानते हैं, समझते हैं। 2025 में पहली बार आधिकारिक रूप से इस दिन को मनाया गया। वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व के हर खेल में खिलाड़ी मित्रता, एकजुटता और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर खेल प्रदर्शन करें। जी हाँ, जीत से ज्यादा खेल भावना अहम है। मौका अच्छा है, सुनवाते हैं चक दे इंडिया का ये बहुत उत्साह से भरा हुआ गीत।

0: महिला सभा कार्यक्रम में अब बारी है मेरी उड़ान की। सिमिलवाने लाई हूँ श्रेष्ठा गोयल जी को। इंदौर शहर ही नहीं पूरे देश में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। तो आपके स्वागत के साथ सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सक्सेसफुल कहानी के पीछे राज क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई?
1: नमस्कार जी। इसकी शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो चुकी थी। हमेशा मैंने चाहा कि जो मेरे साथ के लोग हैं, मैं खुद भी आगे बढ़ूं और अपने साथ के लोगों को भी आगे लेकर आऊं। जब मैंने शादी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, उस टाइम मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से जॉब वाला बैकग्राउंड था, और उसके बाद बिजनेस में आना एक बड़ी चुनौती के रूप में था। और प्रेगनेंसी टाइम में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं बिजनेस में आई, और उस टाइम मैंने धीरे धीरे अपने आप को इसमें स्थापित किया, और हर कदम पे मैंने महसूस किया कि मुझे सपोर्ट रिक्वायर्ड रहा। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए, तब मैंने और जो मेरे साथी हैं, जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाया, और हमने वहीं से शुरुआत की वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, जिसमें आज इंदौर की करीब 20,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और हम उन्हें हर तरह से सहयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए और बिजनेस में आगे आने के लिए।
0: तो ये कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए?
1: मेरे साथ साथ दूसरी महिलाओं को मैंने इसमें शामिल किया। जैसा मैंने आपको बताया, वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिसमें हम दूसरी महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और साथ ही हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं में जो महिलाओं को सहयोग मिल सकता है, कई सारे सेमिनार और वेबिनार जिसमें उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपनी कंपनी के थ्रू वर्क स्टार्ट करना, एंड कई सारी जो नीतियों हैं उन पे हम बात करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हैं जिसमें वो विकास की राह पर आगे बढ़ सकें।
0: बहुत अच्छी बात कही है श्रेष्ठा जी आपने। अपनी आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरी हमारी जो महिलाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहती हैं, उनके सपने को भी आप साकार कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए ये स्वर्णिम युग की शुरुआत है। श्रेष्ठा जी, आपसे बातें करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
1: बिल्कुल, ये स्वर्णिम शुरुआत है, क्योंकि हमारी भारत सरकार भी महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। लाडली बहन योजना, लखपति दीदी योजना, ये सारी योजनाएं महिलाओं को कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार भी कर रही हैं और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बहुत ही योगदान भी दे रही हैं, और उनके कदम मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
0: सरकारी योजना का लाभ लिया है
1: जी? बहुत सारे जो लोन्स होते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों में मिलते हैं, वो मैंने और मेरे ग्रुप ने इसके लिए कई बार अप्लाई किया है, और हम लोगों ने बहुत सरकारी योजनाओं के लाभ भी उठाए हैं। और अभी जो हमारा उद्देश्य है हमारे ग्रुप का, हम लोग पिछले 3 साल से प्रयासरत हैं इंदौर में देश का पहला महिला क्लस्टर बनाने के लिए। इसके लिए भी भारत सरकार हमारा सहयोग कर रही है, और बहुत जल्दी इस क्लस्टर के माध्यम से उद्योग जगत से जुड़ी हुई महिलाओं को हम सरकार के द्वारा जमीन आवंटित करवाएंगे, और उसमें वो अपना उद्योग स्थापित करेंगी और इस विकास की राह में और भारत देश की जीडीपी को बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग देंगी।
0: तो ये किस तरह का काम होगा?
1: मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगी, और ये मल्टी प्रोडक्ट वुमन क्लस्टर होगा। अभी तक जितने भी क्लस्टर बनते आए हैं वो प्रोडक्ट बेस पे रहते हैं, जैसे कि नमकीन क्लस्टर है तो सारे नमकीन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक जगह पे काम करते हैं, और फूड क्लस्टर्स होते हैं, फार्मा क्लस्टर होते हैं, लेकिन इस क्लस्टर का जो बेस है वो महिलाएं होंगी। उनके प्रोडक्ट भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो सेम प्लेस पर एक जगह पे अपना काम कर सकेंगी, तो ये कहलाएगा वुमन मल्टी प्रोडक्ट क्लस्टर, और जो देश का पहला क्लस्टर होगा। इसके साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भारत का डिजिटल इंडिया मिशन है उससे भी हम महिलाओं को जोड़ें, और हम समय समय पे डिजिटल दुनिया के लिए बहनें हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करवा रहे हैं, जिससे वो डिजिटल दुनिया की बारीकी समझ सकें। ई कॉमर्स जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स के जो भी तकनीकियाँ हैं उनके बारे में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करवा रहे हैं महिलाओं के लिए, थे और वो उससे सीख भी रही हैं और ई कॉमर्स में अपनी प्रेजेंस उनकी आ रही है
0: जी।
1: जैसे जैम पोर्टल, इंडिया का जो गवर्नमेंट सप्लाई का जैम पोर्टल है उस पे, उसके लिए हमने भारत सरकार की मदद ली है और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से इंदौर की महिलाओं को, स्पेशली हमारे ग्रुप की महिलाओं को जोड़ा है हमने। अब वो सरकारी टेंडर और को पार्टिसिपेट करने और बिड पार्टिसिपेट करने में बहुत कम्फर्टेबल हैं। जहाँ तक मैंने भी भारत सरकार के माध्यम से ही जैम पोर्टल पे काम करना स्टार्ट किया था।
0: तो इसकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है श्रेष्ठा जी?
1: इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग टाइम टाइम पे कर रहे हैं और हमारे माननीय सांसद ललवानी जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उनका सपोर्ट भी रहा है। वो GDP पे काम कर रहे हैं, इंदौर की GDP को डबल ट्रिपल करने के लिए भी भारत सरकार के सारे प्लान जो हैं वो सांसद जी के थ्रू ही होने वाले हैं
0: जी।
1: एंड हम महिलाओं का उसमें विशेष योगदान रहेगा और हमारा जो मल्टी प्रोडक्ट वुमन क्लस्टर है ये भी जो GDP वाले प्रोग्राम के अंतर्गत ही आएगा। हम इस अपने क्लस्टर के सपने को पूरा करेंगे जल्दी।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, महिलाओं का क्लस्टर बहुत जल्दी तैयार हो और हमारे जो श्रोता बहने कार्यक्रम सुन रही हैं अगर वो जुड़ना चाहें तो इस क्लस्टर से जुड़ने के लिए तैयार रहें और अपने प्रोडक्ट्स अपने आप को तैयार करके रखें। जब इस तरह के प्रोग्राम की बात होती है, कार्यक्रम सुनने वाली हमारी श्रोता बहने हैं, क्या क्या खूबियां उनमें होना बहुत जरूरी है?
1: उनकी कंपनी के पास प्रॉपर लाइसेंस और पेपर वर्क कम्प्लीट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना वो किसी भी सरकारी योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इस क्लस्टर में अप्लाई करने के लिए भी उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अटेंड कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ डिस्प्ले कर सकती हैं और ये पूरी तरह से उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। कुछ प्रोसेस होता है उनका। हमारे ग्रुप की भी कई महिलाएं देश के बाहर साउथ अफ्रीका और लंदन यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले करके आई हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करके आई हैं और जिसमें उनको एयर फेयर से लेके स्टॉल चार्जेस तक भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन सारी योजनाओं का लाभ वो ले सकती हैं, बस उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है।
0: हमें बहुत अच्छा लग रहा है श्रेष्ठा जी आपसे बातचीत करके। और ऐसी क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं और वो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है?
1: देखिए, मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ
0: जी,
1: तब मैंने सुना है ये कि अक्सर महिलाएं जो हैं वो शौकिया तौर पे काम करना चाहती हैं।
0: जी, जी।
1: अगर वो बहुत अच्छी

0: बहुत अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से हैं,
1: जी
0: तो वो कहती है कि वो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, या उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो वो शौक के तौर पे काम करना चाहती हैं।
1: जी
0: तो यहाँ मैं उनको हमेशा करेक्ट करती हूँ कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए काम मत कीजिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, आप हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए,
1: जी
0: देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए काम कीजिए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपका
1: जी
0: डेवलपमेंट होता है, आपके बच्चों का डेवलपमेंट होता है, आपके परिवार का डेवलपमेंट होता है, और वही जाके आगे विकास की राह में देश का डेवलपमेंट करता है। तो करीब 3,000 से ज़्यादा एक्टिव स्टार्टअप इंदौर में हैं, जिनमें 35% जो हैं महिलाएं उनको लीड कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत है कि
1: जी जी
0: महिलाएं स्टार्टअप में आगे आ रही हैं,
1: जी
0: उद्योगों में आगे आ रही हैं।
1: श्रेष्ठा जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। एक बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आ पाई। जिस कार्यनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं वो आपके पूरी हो और आगे सहयोग देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।

देखिए, जब भी हमारे घर से कोई बाहर निकलता है हम यही कहते हैं ना कि भाई संभल के जाना, गाड़ी धीरे चलाना, सड़क सुरक्षा का ध्यान हम सभी को रखना होता है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हम सभी को करना होता है। ग्लोबल रोड सेफ्टी डे, जी हाँ, WHO द्वारा आयोजित एक प्रमुख अभियान है जो सड़क हादसों, सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने की एक अहम मुहिम है। पैदल चलें, साइकिल चलाएं और सड़क पर चलते समय सिग्नल का पालन जरूर करें, हेलमेट पहने, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचें। WHO की इस मुहिम में बराबर सहयोग करें, रोड पर चलते समय रोड नियमों का पालन करें, अपने घर से थोड़ा सा समय से पहले जरूर निकलें, गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। अब बारी है रूपलावण्य की। सखियों, गर्मी में वर्किंग लोगों के लिए सुबह के वक्त प्रॉपर केयर बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की ये धारणा है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ सर्दियों में स्किन केयर करता है। आपको हर मौसम में मॉइस्चराइजर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये त्वचा को नमी देने के साथ साथ कोमल भी बनाता है। टैनिंग और सनबर्न से बचने के लिए आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, साथ ही घर पर कुछ इस तरह से टैनिंग कम करने के लिए उपाय करती रहें। जैसे पका हुआ टमाटर लें, काट कर एक हिस्से में नमक और दूसरे हिस्से में दरदरी शक्कर लगाकर लगभग 10 मिनट उसे यूं ही रख दें। फिर चेहरे पर बारी बारी से हल्की मसाज लगभग 20 मिनट तक करें। चेहरे को साफ ठंडे पानी से धो लें। इस घरेलू उपयोग से चेहरे के जो काले धब्बे हैं प्राकृतिक रूप से साफ होंगे। हाँ, हफ्ते में 3-4 बार टमाटर का ये उपयोग आप जरूर करती रहें। चेहरे को साफ सुथरा चमकदार बनाए रखें।

0: ऐसा क्यों चलते चलते करेंगे काम की बातें। गर्मी में जब लगातार पानी पीने के बाद भी सरदर्द या थकान बनी हुई है तो सावधान हो जाइए, यानी कुछ गलतियां हम जरूर कर रहे हैं। आयुर्वेदा में ग्रीष्म ऋतु को आदान काल कहा गया है। सखियो, आदान यानी छीनना। सूर्य इस मौसम में शरीर के धातु यानी टिश्यू से नमी और ताकत दोनों छीनता है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में ज्यादा पानी पियो ऐसा नहीं है, बल्कि कैसे पानी पियो, क्या पियो और कब पियो ये बताया गया है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी सीधे कभी भी ना पिएं, क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को सप्रेस करता है जिससे थकान बढ़ती है, आपका पाचन खराब होता है। साइंस से समझें तो ठंडे पानी को हमारे शरीर को ऊर्जा यूज करते हुए 37 डिग्री तक लाना पड़ता है ताकि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ध्यान रखें, सामान्य नल का पानी 16 डिग्री का होता है, आइस वाटर से कहीं बेहतर हाइड्रेट करता है हमारे शरीर।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से

0: जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: कवि श्री राग तेलंग,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वाति ओखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। ये है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर बाद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, आवाज कुमार सानू की है और फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। वहीं दूसरी ओर श्री मोदी ने और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक साझा लेख लिखकर कहा है कि दुनिया को संकीर्ण सोच छोड़कर आपसी सहयोग की राह चुननी होगी। लेख में भारत के दो बड़े लक्ष्यों का जिक्र है, इसमें 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। पिछली बैठक पिछले साल जून में वाराणसी में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम के मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। डीजीपी कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और हॉक फोर्स के जवान इस सम्मान से नवाजे गए। हॉक फोर्स ने आधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी के दम पर नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। किसानों को 2,585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब तक किसानों को 10,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। इससे ट्रेनें समय पर चलेंगी और यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ने के अपने पुराने आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए। अदालत ने बुजुर्गों, बच्चों, यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। आज सोने और चांदी दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए महंगा होकर 1.59 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2181 रुपए उछलकर 2.70 लाख रुपए हो गए हैं। प्रदेश में कल भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में पारा 46.8 डिग्री पहुंचा, जो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। नौगांव में 40, राजगढ़ में 45.5, रतलाम में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आगर मालवा में जिला पोषण बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में कुपोषण मुक्ति अभियान, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई। कटनी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मानसून पूर्व तैयारियां तेज कर दी हैं। शिवपुरी में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित 10 दिवसीय खरीफ पूर्व कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून

0: और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गयी है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट

0: बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, तपती हुई दोपहरी की जब जिंदगी कुछ पल फुर्सत की तलाशती है, किसी गीत की छांव तले सुस्ता लेना चाहती है, इन पलों में हम लेकर आए हैं भावनाओं से सजी वो पोटली जिसमें हैं आपकी चिट्ठियां, आपके शब्द, आपकी फरमाइशें। तो आइए कुछ पल सुरों के साथ चलते हैं, कुछ पल सुकून के साथ गुजारते हैं, कुछ पल आपके साथ गुजारते हैं, मिलकर गुनगुनाते हैं आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत कुर्बानी फिल्म से, आवाजें कंचन, मनहर और इंदिवर आनंद की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश आप सबकी है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। निम्बोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोल वाघ। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। देवास से राजीव अग्रवाल। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। ये चिट्ठी आई है बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।

और अब आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। अनुरोध आप सबका है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये चिट्ठी आई है डोंडी लोहारा दुर्ग से। लिखने वाले श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार, प्रभा देवी। सारणी जिला बैतूल से इसी गीत को पसंद करते हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। शाजापुर से मधु राजावत, एमएम राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया हुआ है प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से। लिखने वाले श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।

और अब आइए जूली फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन। अनुरोध आप सबका है। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जमुना देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। सौगा धमतरी से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र कुमार चंदन। ये खत आया है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिलदा से इस गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा, प्रिया, ओशीम और सोमिन कुमार चंद्र। ये खत आया है ग्राम अमलेश्वर से। लिखने वाले श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। दुनिया ये तसव्वुर हम आबाद नहीं करते, याद आते हो तुम खुद ही हम याद नहीं करते।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

और अब आइए सुनते हैं नूरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। पसंद आप सबकी है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई कि तेरा नाम लेकर पुकार लूं।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के पादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया।

0: प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:15 पर और रात 10:00। शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशां आप सुनेंगे, इसमें आज सुनिएगा आबशारे गजल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे के 2 दिवसीय दौरे में उन्होंने भारत नॉर्वे व्यापार और रिसर्च समिट में भी हिस्सा लिया। समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ समेत 250 से अधिक लोग शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60% बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती बिजली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड में जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि किसी भी एक मामले में एक वर्ष में ₹25,000 किए जाने के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वाग्देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खेल में सबसे बड़ी जीत क्या होती है? ट्रॉफी जीतना, रिकॉर्ड बनाना, या फिर ऐसा इंसान बनना जिसे हारने वाला भी सम्मान दे। यही भावना हमें सिखाती है फेयर प्ले, यानी ईमानदारी, सम्मान और सही भावना के साथ खेलना। और इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ, नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त तुषार तिमलसेना। स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

आयुष्मान खुराना की आवाज में सुना ये गीत फिल्म विकी डोनर से। गीत संगीत था आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का। दोस्तों, हर साल 19 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है विश्व फेयर प्ले दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल जगत में ईमानदारी, गरिमा, खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप और बिना किसी भेदभाव के आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 जुलाई 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 19 मई को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 19 मई 2025 को पहला आधिकारिक विश्व फेयर प्ले दिवस मनाया गया। फेयर प्ले केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका भी है। जब खिलाड़ी नियमों का पालन करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करते हैं और जीत के साथ विनम्रता तथा हार के साथ धैर्य दिखाते हैं, तभी खेल की असली सुंदरता सामने आती है। आज के समय में जहां जीतने की होड़ बहुत बढ़ गई है, वहां यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सफलता से ज्यादा जरूरी है सही रास्ता चुनना, और ईमानदारी से खेला गया खेल हमेशा सम्मान दिलाता है। खेल हमें टीम वर्क, अनुशासन और भाईचारे की सीख देता है। एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीत ले। दोस्तों, खेल के साथ साथ हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी फेयर प्ले के कुछ तरीकों को अपनाना चाहिए। जैसे खेल में जब किसी खिलाड़ी से फाउल होता है तो वह उसे स्वीकार करता है। आम जिंदगी में भी अपनी गलती को बिना किसी अहंकार के मान लेना और माफी मांगना फेयर प्ले है। जब कोई आपसे असहमत हो तो उसकी बात को बिना काटे धैर्य से सुनना। आप किसी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात रखना ही असली खेल भावना है। किसी दूसरे के काम या आइडिया का श्रेय खुद न लेना। जिसने मेहनत की है उसे उसका हक और तारीफ मिलना जरूरी है, और ये भी फेयर प्ले है। दोस्तों, आम जिंदगी में फेयर प्ले का सीधा सा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि खेल हो या जीवन, हम हमेशा निष्पक्षता, सम्मान और ईमानदारी की भावना को अपनाएंगे, क्योंकि असली विजेता वही है जो इंसानियत और खेल भावना दोनों के साथ लेकर चलता है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ बातें फेयर प्ले दिवस के ऊपर। तो आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

शान श्रेया घोषाल की आवाज में सुना ये गीत फिल्म पीके से। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। तो श्रोताओं, अब तैयार हो जाइए अपने साथ कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि अब समय है आपके लिए रोजगार सूचना का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है SBI अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों के लिए। आज से यानी 19 मई से आवेदन पत्र जारी किए जा चुके हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून। मैं पुनः बताऊं कि पदों की संख्या है 7,150 और आज से यानी 19 मई से आवेदन पत्र जारी हो चुके हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की 8 जून। और अधिक जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। तो साथियों, अब समय है कार्यक्रम में अगले गीत का।

0: कुणाल गालजावाला की आवाज में सुने गीत फिल्म काल से। गीतकार थे शब्बीर अहमद और संगीत था सलीम सुलेमान का। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है, वह जोश होता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वैज्ञानिक या किसी बड़े क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी चिंता बन जाती है पैसों की कमी। इसलिए हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कई सपनों को उड़ान देता है, और वह है एजुकेशन लोन, यानी शिक्षा ऋण, यानी वह आर्थिक मदद जो किसी छात्र को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने नहीं देती। यह एक ऐसा लोन है जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी होनहार छात्र की पढ़ाई न छूटे। यह लोन केवल कॉलेज की फीस तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें किताबें, हॉस्टल और अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं तो हवाई यात्रा का टिकट भी शामिल हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या लोन लेना सही है? तो श्रोताओं, अगर लोन सही उद्देश्य के लिए लिया जाए और पूरी समझदारी से लिया जाए तो यह बोझ नहीं बल्कि भविष्य के लिए किया गया एक निवेश होता है। श्रोताओं, देश के भीतर किसी भी मान्यता प्राप्त कोर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि के लिए लोन लिया जा सकता है, और विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए इसमें आमतौर पर लोन की राशि अधिक होती है। दोस्तों, लोन चुकाने की प्रक्रिया कोर्स पूरा होने के 6 महीने से 1 साल बाद या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद शुरू होती है। पढ़ाई के दौरान छात्र को EMI देने की जरूरत नहीं होती, हालांकि इस दौरान साधारण ब्याज जुड़ता रहता है। तो श्रोताओं, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और अपने भविष्य को खुद आकार दीजिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती, वह इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, सोच को बड़ा करती है और जीवन को नई दिशा देती है। तो साथियों, ये थी कुछ बातें एजुकेशन लोन पर। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।
1: हाँ, यही तो है सब निशानियां,

शान की आवाज में सुन रहे थे आप फिल्म राजू चाचा से। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था जतिन ललित का। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का

लता मंगेशकर की आवाज में सुना ये गीत फिल्म कुदरत से। गीतकार थे मजरू और संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलेंगे नई सोच नई उम्मीद के साथ। इजाजत दीजिए आपके रेडियो दोस्त तुषार तिमल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी, आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उड़ता पंजाब से, शाहिद माल्या की आवाज़, श्री शिव कुमार बतलवी के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत।

मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से। बोल लिखे मिथुन ने और संगीतबद्ध किया मिथुन ने ही। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। मनोज मुंतशिर के लिखे बोल, जीत गांगुली का संगीत, अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ें हैं और फिल्म का नाम है रुस्तम।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। यहाँ आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी।

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने लगे। हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। श्रोताओं, अब आपके लिए एक विशेष सूचना। भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनीतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है, ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर ना हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाई जा सके। एतदर्थ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है, ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अतः मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि का घेर के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति या क्षतियों की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना या करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना आदि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होंगे। सूचना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे के दो दिवसीय दौरे में उन्होंने भारत नॉर्वे व्यापार और रिसर्च समिट में भी हिस्सा लिया। समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ समेत 250 से अधिक लोग शामिल हुए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानून मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के अंतर्गत मामलों की पहचान कर उनके तेजी से निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना केस में उनका पक्ष पूछा है। आप नेताओं मुनीश सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। रिटायर्ड जज की बहू त्रिशा शर्मा की मौत के मामले पर एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा, लुकआउट नोटिस के लिए डीसीपी भोपाल कमिश्नरेट और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवश्यक पत्राचार किया गया है। इस प्रक्रिया पर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
5: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
3: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The third India-Nordic summit was held in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark participated in the summit. With the Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, now in force, the summit aimed to deepen trade and investment ties between India and the Nordic region.

0: ये गीत हमने सुना फिल्म संजोग से लता दी और मुकेश साहब की आवाज में, और बोल लिखे राजेंद्र कृष्ण ने, और अब सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना से एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा

सदाबहार गीतों में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार और 6:30 पर आप सुन सकेंगे मार्केट मंत्र। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 में।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना

अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कलंक से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून क्या है आपने और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। श्रोताओं, आइए अब आपको ये अगला गीत हम सुनवाते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और साथियों की। अन्विता दत्त के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है विशाल।

याशिता शर्मा और मनीष कुमार टेपू और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल धड़कने दो से। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आपका फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म डंकी से। अरिजीत सिंह की आवाज़, स्वानंद किरकिरे और आई पी सिंह के लिखे बोल, साथ ही प्रीतम का संगीत।

0: श्रोताओं, फिल्म धूम 2 के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी
2: ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
3: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
2: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुट्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदोटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ओर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल 1 दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। वक्त हो रहा है शाम के 7:05 और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गर्मी में के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा की भेंटवार्ता। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और रात्रि 10। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का हमीर राग पर ख्याल गायन। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी बुधवार 20 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा का आनंद आप लेंगे 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे कय्यूम मुनव्वर द्वारा गाई गजलें। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे पंडित एमएस गोपाल कृष्णन का वायलन वादन। राग होगा अहीर भैरव। 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का 7 आप सुनेंगे 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 2:00, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:15 पर। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे खरीफ फसल की बुवाई पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य विषय पर भेंटवार्ता। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रेडियो नाटक क्या ऐसा होगा। इस नाटक के लेखक होंगे मधुराजन और प्रस्तुतकर्ता होंगे राकेश ढूंढियाल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित एमएस गोपाल कृष्णन का वायलन वादन। राग होगा भोपाली। 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल यानी 20 मई 2026 बुधवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चार राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी रेबीज और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, 22 शहरों में तापमान 44 के पार, अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के सम्मान के नजरिए से भारत और नॉर्डिक देश स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश बढ़ा है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: सम्मेलन से पहले श्री मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात भी की। 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। अब श्री मोदी 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 साल में बस्तर देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। जगदलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2031 तक बस्तर के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर में 200 सुरक्षा शिविरों में से 70 को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा, जहाँ बैंकिंग, स्कूल, कौशल प्रशिक्षण और वनोपज प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहां कुत्तों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हो और लगातार हमलों से जन सुरक्षा खतरे में हो, वहां ये कदम उठाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश भी जारी किए। साथ ही कोर्ट ने कुत्तों की नसबंदी और आश्रय स्थल भेजने के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60% पर बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती बिजली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वाग्देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहाँ स्थापित किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने आज भोपाल के आदि भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय अंचल की बच्चियां सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा छोड़ देती थीं। इसे देखते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 बसें चलाई, जिससे कॉलेज आने वाली छात्राओं की संख्या 30 से बढ़कर 80% हो गई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में कल प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल के सैकड़ों मेडिकल स्टोर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं है, जिससे नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। हालांकि अस्पतालों के अंदर में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना में सेवा के बाद श्री खंडूरी ने ईमानदार और पारदर्शी राजनीति का आदर्श स्थापित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक श्री खंडूरी का योगदान अमूल्य रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने आज भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का दौरा किया। यहां संस्थान के निदेशक मनोरंजन मोहंती और कृषि वैज्ञानिकों ने समिति को पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 11 सदस्यीय समिति दल के साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी है। पहले सीमा 16,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। यानी राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद को एक साल में एक मामले में अधिकतम 25,000 रुपए तक की मदद दे सकेंगे। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन और सामाजिक न्याय विभाग की 252 संस्थाओं की निगरानी के लिए क्वालिटी ऑडिट मोबाइल ऐप लागू किया है। इसके जरिए वृद्धाश्रम, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, विशेष विद्यालय और नशा मुक्ति केंद्रों का डिजिटल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मौके पर फोटो खींचकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे और संस्था को ग्रेडिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों की स्कूल से झिझक खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक ही परिसर में लाने का फैसला किया है। इस को लोकेशन मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी से पहली कक्षा में जाना आसान और सहज हो जाएगा। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में आज पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया, जबकि भोपाल और इंदौर में दोपहर सड़कें सूनी दिखाई दी। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष एसी ट्रेन मां वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ट्रेन को विदा किया। झाबुआ, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कटनी में जनजातीय समुदायों को शासकीय योजनाओं का 100% लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनभागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। आगर मालवा में कल हुई टीएल बैठक में जिला पंचायत सीओ ने जिले में गठित की जाने वाली विभागीय समितियों का शीघ्र गठन कराने के निर्देश दिए। नीमच शासकीय आईटीआई में कल युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा मक्सी दाहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद यात्री बसों की सघन जाँच की जा रही है। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। नर्मदापुरम जिले में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आईईसी अभियान चलाया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सगई भैया बहनन का रूबी बहन की राम राम। देखो भैया, जा समय गर्मी अपाई पूरी चरम सीमा पर है, तो हम आपसे जो ही कहेंगे कि भैया जा गर्मी में आपाओ बचाव करें। जहाँ तक संभव हो भैया के दिन में, यानी कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। पर भैया देखो, घर में कोनू ना कोनू अपन के लाने, बाजार जावे के लाने या दफ्तरन में जावे के लाने, अपन के लाने काम पड़ा ही जात है। तो भैया ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें घर से खाना खा के पानी पी के निकलें, और भैया अपाए जो सिर है बाय ढककर और पूरी बाँह के कपड़ा पहन कर ही घर से निकलें, और भैया समय समय पर पानी पियत रहें। जहाँ तरह से अपन जो है जा धूप से या गर्मी से आपाओ बचाव कर सकते हैं। और भैया घर में भी अपन को जो चाहिए कि अपाए जो अपन भोजन कराते हैं, पानी पियत हैं, बाँह में भी अपन के लाने ऐसे खाद्य पदार्थों को उपयोग करना है जो कि अपाए शरीर के लाने ठंडक दें। भैया जा समय अपन के लाने छाछ है, नींबू की सिकंजी है, धनिया पुदीना की चटनी है जो, और भैया रायता, जो सब चीज़ें अपन के लाना ज़्यादा से ज़्यादा अपने खावे पीवे में उपयोग करनी है। तो जा तरह से अपन जो है जा सर्दी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। और भैया एक और बहुत ज़रूरी बात हम आपसे कह वो चाहेंगे, काहे से कि जब गर्मी पड़ रही है और एकदम से अपन के लाने पसीना आते है, और जब पसीना आते तो अपन को प्यास भी तेज लगाते हैं, तो बासा में अपन का करते हैं ठंडो पानी पी लेते हैं। तो भैया ऐसो ना करें, पसीना सूख जाए तभी सादा पानी पिएं, और भैया ठंडो पानी पीना है तो मटका को पिएं, फ्रिज का पानी तो पिए ही नहीं। काहे से कि ठंडो गर्म हो जाते तो जुखाम खांसी सर्दी जुखाम जे सब कछु अपन के लाने हो जाते। तो भैया जिन सभी बातन को अपन के लाने ध्यान रखनो है। देखो भैया जे तो भाई स्वास्थ्य संबंधी बातचीत, और अब अपन बात करें बायोगैस संयंत्र की। तो देखो भैया अपन जो देख रहे हैं कि अब जो ऊर्जा के स्रोत हैं वे घटत जा रहे हैं, और जनसंख्या बढ़त जा रही है, और भैया अब जो पश्चिम एशिया में अपन ने जो लड़ाई के युद्ध के जो अभी समय चल रहा है, बा समय अपन ने देखो कि जो पेट्रोल डीजल हैं बाकी कितने किल्लत भाई और ईंधन की। तो भैया ऐसे में अपन को कुछ करना चाहिए कि अपने पास जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं जिनको अपन को उपयोग में लाना चाहिए। और भैया जिन्हें वैकल्पिक स्रोतन में एक है बायोगैस ऊर्जा। भैया जामे एक संयंत्र लगावे की अपन के लाने आवश्यकता होत है, और भैया बायोगैस संयंत्र एक ऐसी तकनीकी संरचना है जो पशुन के गोबर से संचालित होत है। और भैया जामे कहा है कि अपन के लाने ईंधन तो मिलत ही है, धुआं रहित ईंधन मिलत है, और संगे भैया उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद सोई मिलत है भैया, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जाको उपयोग भैया ग्रामीण क्षेत्रन में खाना पकावे और बिजली उत्पादन के लाने करो जात है। और भैया जहाँ से कहा है कि आप जो डीजल से चलने वालों पंप होते हैं ना वो भी चलाओ जा सकते हैं, और जो कारा जो और भैया जो चारा काटवे वाली मशीन होते है वो भी जहाँ से चल सकते है। तो देखो भैया बायोगैस संयंत्र द्वारा ईंधन एवं खाद अपन के लाने दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। जाने से कहा होगा कि भैया जो आप लाने धुआं रहित ईंधन मिलत है, तो जो अपनी माताएं बहनें हैं जो महिलाएं हैं जो खाना बनाते हैं बिनको स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कैसे के धुआं से बिनकी आंखें स्वस्थ रही हैं, और भैया देखो अपने बर्तन जो है वो भी साफ़ सुथरे रही हैं, और भैया जब बर्तन जब काले नहीं होंगे तो जो महिलाएं बर्तन साफ कराते हैं मान जाते थे तो बामे का होता तो हाथ काले हो जाते थे, तो भैया जैसे हाथ भी काले नहीं होंगे, कोमल और स्वस्थ बने रहेंगे। और भाई भैया इतनी अच्छी इतनी गुणवत्तापूर्ण खाद मिल रही है, तो भैया अपाए लाने उस अपन जो खाद को उपयोग अपाए खेतन में कराते हैं। और भैया जो अपील अपाए प्रधानमंत्री जी ने भी करी है कि अपन जो है देसी खादन को उपयोग अपाए खेतन में करें। तो भैया देखो आप बायोगैस तो देखो एक है, पर जाके लाभ के देखें तो भैया हम तो जो ही अपाए भैया बहनन से उम्मीद कराते हैं कि जौन भैयान के घर में 8 से 10 पशु हैं वो जो संयंत्र को लगवा सकते हैं और जी सब लाभ ले सकते हैं। और भैया देखो ये तो बहुत ही अच्छा है, और हमारे कछु भैयान के जो है घरन में जो लगो भी है और वो जो है जैसे लाभ भी ले रहे हैं, है कि नहीं भैया? तो आप भी जो है जोन भैयान के घर में नहीं है वो जो है जय संयंत्र को लगवा सका थे। और भैया
आप जस इन संयंत्र को जरूर लगवाएं। और भैया अब अपन जो चर्चा को इतना ही विराम देते हैं और अब अपन बात करें अपने पर्यावरण की। तो देखो भैया, अपा जो पर्यावरण है वो पेड़ पौधन पर निर्भर करा थे। कैसे के जो पेड़ पौधा होते हैं वो जो है जो अपो पर्यावरण है बाको संतुलन बनाए रखने में बहुत ही सहायक होते हैं। अब वो सहायक देखो, जो अपन सांस लेते हैं बाके लाने अपन को ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु की आवश्यकता होते तो वो जे अपन के लाने पेड़ पौधन से मिलते हैं। और जे जो पेड़ पौधा अपो भोजन बनाते हैं वो अपने द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कराते हैं। तो भैया देखो, अगर पेड़ पौधा नहीं हुई है तो अपा जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होगो। तो ये जई खिलाने अपन को करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और हमेशा अपन के लाने ऐसे प्रयास करने हैं जैसे कि अपा जो पर्यावरण है बाके लाने कोनो भी नुकसान ना पहुँचे। अब ये देखो, एक तो क्या है कि एक तो जो पेड़ पौधा लगाने हैं अपन के लाने, दूसरा अपन के लाने स्वच्छता रखनी है और अपन को जो करना है कि अपन स्वच्छता रखें, कचरा होते होते ना फेंकें। अपने जो जल के स्रोत हैं बिन के लाने भी अपन के लाने स्वच्छ रखना है। और भैया देखो, अबे जो समय बहुत ही अच्छो है पेड़ पौधा लगावे के लिए तैयारी करवे को। कैसे के अबे पड़ रही है गर्मी और गर्मी के बाद आएगी बरसात, तो अपन तैयारी जाके पहले से ही कर लेंगे तो अपन को पेड़ पौधा लगावे में आसानी हो जाएगी। और भैया देखो, पेड़ पौधा अपन जब ऐसा तैयारी कर लें, और भैया देखो क्या होते हैं कि पेड़ पौधा अपन लगा के छोड़ देते हैं और फिर भी इनकी देख रेख नहीं कराते हैं। तो भैया पेड़ पौधन की देख रेख कर वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अपन बच्चन की अपन देखभाल कराते हैं जब वे छोटे होते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं फिर वो अपाए आप ही खावे पीवे लगाते हैं। तो भैया ऐसे ही पेड़ पौधन को है, तो अपन के लाने जो है पेड़ पौधा अपन रोपें और संगे भैया इनको जो है सुरक्षा करें, पशुधन से सुरक्षा करें, इनकी सिंचाई करें। और भैया देखो, जब बरसात आ जाते तो सिंचाई की कम आवश्यकता होते है, तो जई के लाने जे जो बरसात को समय होते वो पेड़ पौधा लगावे के लाने बहुत ही अच्छो समय होते है। तो देखो अपन तो कहा है कि देखो कोनू के पास देखो जगह नहीं है, तो वो जो है कि सड़क के किनारे है या अप जहाँ कहीं उसे जगह देखे अपने घर के आसपास है, बाग बगीचा होते हैं वहाँ पे जगह होते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। और भैया देखो, अपन तो गांव से संबंध रखते हैं और गांव में अपने खेत होते हैं, तो अपन जो है अपने खेत की मेड़न पे जे पेड़ पौधा लगा सकते हैं। और अगर देखो भैया अपन फलदार वृक्ष लगाएंगे तो वहाँ से देखो अपन को डबल फायदा होगा। एक तो अपन के लाने वहाँ से फल भी मिलेंगे, दूसरा अपन पर्यावरण को भी अच्छो वहाँ से लाभ होगा, यानी कि अपन पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और वहाँ को संतुलन बनो रहेगा। तो भैया हम आपसे जो ही कहेंगे कि आप जो है पेड़ पौधा लगाएं, और भैया हम अपने भैयन से जो ही उम्मीद कराते हैं कि वे पर्यावरण को संरक्षण करने में अपा पूरा सहयोग देंगे। और जय उम्मीद के संगे भैया जो चौपाल कार्यक्रम है बासे चलबे की हो रही है बेरा, तो अपा रूबी बहन को देव आज्ञा। राम राम, जय जवान जय।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। ये पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सगे भैया बहन खा मंगरू भैया की और
5: ध्रुवी बहन की राम
4: राम, राम राम। और किसान भैया देखो, अपन देख रहे कि इस समय जो है चल रहा हो गर्मी इनको मौसम। और जी गर्मी के मौसम में अपन देख रहे हैं कि जिन भैया के पास जैसे पानी नहीं है तो वो भैया के खेत जो है इस समय खाली पड़े हैं। तो अपन जो खेत खाली पड़े हैं वे भैया के लाने अपन जो है गर्मी में कछु काम ऐसे कर लेना चाहिए जिसे अपन जो है आगे आने वाली फसल में
5: लाभ हो
4: है ना। तो जहाँ में अपन जैसे सबसे पहला काम है जुताई।
5: जुताई,
4: तो जुताई को काम देखो बिलात किसान भैया ने तो देखो पहले ही जैसे खेत खाली भाई ना तो तब जुताई कर दी। लेकिन कछु भैया ऐसे ही है कि वो मौसम मतलब बोनी करेंगे वाके पहले ही फिर जुताई करेंगे फिर इकट्ठी बोनी कर देंगे, तो ये काम का है गलत है। अब ऐसे अपन का है कि जुताई कर लें है ना। और जिन भैया ने जैसे प्लाऊ चलाने हैं तो हर तीन साल में पहलाना चाहिए अपन खेत में प्लाऊ चला दें, मतलब गहरी जुताई अपने लाने करना चाहिए। और गहरी जुताई करवे के अपन फायदा तो अपन सब भैया जाना थे,
5: सब भैया जाना थे सही
4: नीचे की माटी जो ऊपर आ जाते है वहां जो फसल को हानि पहुंचाए वाले कीट रोग रहे थे बस अब ऊपर आ जाते हैं। तो जिसे कहा है ये भीषण जो गर्मी पड़ रही ना
5: तो
4: तब के नहीं पूरी तरह से वे काहे नष्ट हो जाते हैं,
5: जो कीट के लार्वा वगैरह होते हैं
4: वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।
5: और तो, जो खरपतवार के बीज वगैरह छूट जाते हैं बेबी सब मर जाते हैं,
4: पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो और जहाँ में जा है कि जैसे अपन देख रहे हैं कहूँ कहूँ बूंदाबांदी हो जाते हैं अच्छे पानी पड़ जाते हैं, अगर इस समय कोई पानी पड़ गए तो बात का है कि वो डेला जो है माटी भुरभुरी हो जाते हैं है। तो वह अपने लाने आ गए अधिक समय तक नमी मुंह में बनी रहे जाको जो फायदा भी है।
5: तो काय से नहीं तो देखो चिकनी मिट्टी रहता है जैसे अपन जुताई नहीं करें तो पानी बह के वैसे ही निकल जाते हैं, जब जुताई कर देते हैं तो पानी खेतन में ही रह जाता है,
4: खेत में मतलब समा जाते हैं अच्छे से
5: माटी में।
4: तो जो अपने लाना फायदा मिले थे तो जो किसान भी करना चाहिए। दूसरा लो जो है कि अपने मेड़बंदी काम भी अपन सब भैया खेत खाली रहते हैं अड़ोसी पड़ोसी के, तो वहाँ में कहा है मेड़ अपन जो है जैसे बनाने हैं बगल में दूसरे भी जाओ खेत तो बाको खेत अलग दिखना चाहिए, पाओ खेत अलग दिखना चाहिए, मेड़ अलग दिखनी चाहिए
5: मेड़, सही है
4: ना। नहीं तो कहा है कि हमने देखे कि खेत और मेड़ दो ही भी एक से रहते हैं तो ना अपन ये पता पड़ा तो खेत है कि जो मेड़ है तो अपन मेड़ खेत से ऊंची बनानी है ना। तो बात कहो कि मेड़ पे एक तो पहला ना बरसात में चल भी अच्छी जगह मिल जाएगी, दूसरी बात वो बढ़िया घाव घास उग जाते हैं तो वो पाई पशुओं ने काम में आ जाता, तीसरी बात जाकर खेत को पानी खेत में ही रहते चाहे अवय देख लो और चाहे अपन फसल करें वो पानी दे दें तब भी वास में भी देख लो, उन्हें तो कहा होते अपन ने जब पानी पर गाओ या अपन ने फसल में पानी दो तो वो निकल के खेत के खेत के बाहर निकल जाते हैं। तो वहां से कहा है कि भाई भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाते घट जाते हैं ना। तो जो अपन लाने करने हैं तीसरा काम अपन जो भी कर सकते हैं जब मौसम में कि जैसे अपने गोबर की खाद को उपयोग करने हैं
5: तैयार कर सकते
4: तो वहाँ अपन गोबर की खाद तैयार रहेगी अपने जो अपने खेत में ही समय बढ़िया डाल के और बढ़िया जुताई करके उसको मिला सकते हैं अपन में
5: कि अच्छे से मिल जाएगी
4: ना। वो एक खाद भी पानी पर गाओ तो बात तो फिर समझ लो कि बिल्कुल तीन साल नो जो है पाओ खेत पूरी तरह से बहुत ही अच्छा होगा, बाकी पैदावार पहलाने बिलात अच्छी मिलेगी
5: मिलात अच्छी मिलेगी। और संग ही का हो कि भाई जो अपन देख रहे हैं कि भाई जो खेत की माटी है बाकी जो है उर्वरा शक्ति घटत जा रही है दिनों दिन है ना,
4: क्योंकि अपन रासायनिक खाद उर्वरकन को उपयोग कर रहे हैं ना तो जी वजह से वो घट रही है। अपन जब जब जैविक खेती पे आएंगे प्राकृतिक खेती पे आएंगे तो जहाँ गोबर की खाद है वर्मी कम्पोस्ट है जिनको अपने लाना उपयोग करेंगे तो एक तो पौधे को पैसा बचे वो दूसरी चीज पैदावार भी लाता अच्छी होगी और भावियों को अच्छा मिलेगा
5: काय से कि अपन देख रहे हैं आजकल बाजारन में जो है जैविक उत्पादन की
4: मांग है बिल्कुल सही
5: तो लाने अगर अपन जैविक खेती कराते हैं प्राकृतिक खेती कराते हैं तो अपन के लाने आय भी अच्छी हुई है और लागत तो कम लग ही रही है तो अपन को डबल फायदा हुआ कि नहीं। और संगे भैया देखो आप जो पर्यावरण है वो भी स्वस्थ रहेगा। और अपन जो रसायन उनकी अपन जो उत्पाद खाते हैं बासे का होते अपन मनुष्य के संगे संगे अपन पूरे पर्यावरण पे जाकर असर पड़ाते हैं,
4: मनुष्य में भी बीमारी
5: हो जाते हैं। तो जे सभी बातन को जो है अपन को ध्यान रखना है कि जे करना है कि अपन जो है प्राकृतिक खेती को अपना
4: बिल्कुल गर्मी के मौसम में खाली समय है अपन आसानी से जो काम को कर भी सकते हैं। तो हाँ। किसान भैया इनके लाने जो करना भी चाहिए।
5: और देखो मंगरू भैया आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन आप कार्यक्रम को एक विशेष क्रम होते किसान मणि गांव में जिमें का होता है कि आप कोनो भी भैया गांव में जाते हैं और वो गांव के किसान भैया बहनों से बातचीत कराते हैं और इनके अनुभव साझा कराते हैं। तो भैया वही क्रम में आज हम लेकर आए हैं आप भैया इनके लाने ग्राम मछावली विकासखंड करेरा जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग और भैया जहाँ मैं किसान भैया बहनों से बातचीत करी है मंगरू भैया आप ही ने और भैया जहाँ कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर समर्थ अग्रवाल।
4: तो सुना था भैया जापान स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम। किसान भैया देखो अपन किसान भैया के लाने जो है समय समय पर बिला तरह की जानकारी दिए थे और किसान भैया से अपन जो है जो खेती कर रहे हैं उनके अनुभव लिए थे और वे अपन लाने जैसे वो खेती किसानी में काम कर रहे हैं उनके बारे में अपन को जानकारी दिए थे। और जानकारी लेवे को अपन उद्देश्य केवल यही है कि जैसे किसान भैया जो काम कर रहे हैं व जो है कोई काम ऐसा होते हैं कि अपने दूसरे किसान भैया नहीं कर रहे हैं और अपने जे किसान भैया का पहलाने बता रहे हैं तो जो अपने लाने प्रेरणादायक होते हैं वह काम को अपन करके जो है काम को कर सकते हैं। तो जय हमारा उद्देश्य रहते हैं और जय कारण से अपन जो है किसान भैया के पास जाते हैं उनका अनुभव लिए थे और आपके लाने जो है जो अनुभव सुनवाते हैं जिसे कहा है कि आप भी जो है खेती के नए नए तरीका सीख सको और आगे खेती कर सको। तो आज अपन किसान मणि गांव में क्रम के अंतर्गत सो किसान भैया आज अपन आ गए हैं विकास खंड करेरा के ग्राम मछावली में जौन जिला शिवपुरी है। सो अपन किसान भैया से तनक देर से बात करेंगे। इससे पहले अपन सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम। तो किसान भैया देखो भाई बीच में जो किसान भैया हैं तो अपन जानते हैं सबसे पहले इनको नाम। तो भैया आप नाम बताओ।
6: मेरा नाम हजरत सिंह।
4: हजरत सिंह जी अपनी उम्र कितने की होगी?
6: 26 साल।
4: 26 साल अपनी उम्र हुई। और अपन अगर खेती किसानी की जो है खेती की जमीन की अगर अपन बारे में बात करें तो खेती की अपने पास जमीन कितनी है?
6: 40 बीघे।
4: 40 बीघा जमीन है। और जहाँ में अगर अपन बात करें अपने सिंचाई के साधन की तो अपने पास जहाँ में सिंचाई के साधन कहाँ है? तो जैसे अपन ने जो अपने पास जो जमीन है और जहाँ में अपन ने ड्रिप सिस्टम लगा रखो है तो जहाँ ड्रिप लगावे से अपने लाने फायदा कब होता है?
6: इससे क्या है पूरी जड़ों तक पानी पहुँचता है। वैसे लगाते हैं तो आधा गीला होता है और आधा सूखा रह जाता है।
4: मतलब जो है कि पानी पौधा के लाने पर्याप्त मिल जाता है। और वैसे अगर अपन लगाएंगे तो पानी जो है पानी की बर्बादी ज्यादा है ना। पानी पौधा के लाने पर्याप्त
6: पानी नहीं मिल पाता।
4: पौधा के लाने
6: जितना पौधे को जरूरत रहती है उतना नहीं मिल पाता। पहले इसमें गेहूं था, पहले इसमें प्लाव किया था, प्लाव के बाद में कल्टी चलाए, कल्टी के बाद में इसमें देसी खाद डाला था। देसी खाद में क्या है कई तत्व रहते हैं तो देसी खाद से कोई भी फसल हो कोई सी भी चाहे वो तिलन हो चाहे दलहन कोई सी भी हो चाहे सब्जी कोई सी भी हो उसमें बढ़िया पैदावार होती।
4: नहीं तो देसी खाद से मतलब अपने जामे कौन सी खाद अपने लाई देसी खाद में?
6: देसी खाद जे गाय भैंसों का गोबर।
4: गोबर की खाद ना
6: जी।
4: तो जामे अपन गोबर की खाद का उपयोग क्यों करो? अपन रासायनिक खाद और बर्गन का उपयोग अपन काहे नहीं करो?
6: देसी खाद का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो देसी खाद काम करता है जो रासायनिक खाद नहीं करता। रासायनिक खाद मात्र 2-3 महीने या 15 दिन या 20 दिन इतना काम करता है और ये देसी खाद 3 साल चलता है।
4: और अगर अपन लागत की बात करें तो जहाँ में लागत कौन से में ज़्यादा आ जाता है?
6: इसमें लागत रासायनिक खाद में ज़्यादा लागत है और देसी खाद की में कम लागत है।
4: और अगर अपन बात करें भूमि के लाने लाभदायक कौन सा है, रासायनिक खाद या अपनों देसी खाद?
6: देसी खाद।
4: और भी बिलात जो है पेड़ जहाँ में फलदार लगे हैं तो जी आप लगावे को का उद्देश्य है कि फलदार अपन ने पौधा काय लगाए?
6: जैसे अब ये फलदार पेड़ हैं तो इनसे क्या है हमारे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है, घर के आगे अच्छा भी लगता है और फल भी हमारे लिए खाने के लिए हो जाते हैं इसीलिए जो फल वाले पेड़ लगाते हैं।
4: खेत पर छाया भी मिल जाता है। और ताज़ा अपने लाने जो है जो फल मिल जाते हैं खावे के लाने तो स्वास्थ्य के लाने भी फायदेमंद है ना। और खेती अपन कर रहे हैं, खेती के संगे अपन ने जो पशु पाले हैं
6: जी
4: कौन कौन से पशु?
6: भैंस है, गाय है।
4: तो जैसे अपन खेती के संगे पशु क्यों पाले जाते हैं, कुछ फायदा है इन्हें पालने से?
6: इनका यही फायदा है कि हमारे बच्चों को हमारे लिए घी दूध दही मिलता है और दूसरी बात, हमारी फसल के लिए सबसे ताकतवंद चीज है इनकी गोबर, तो उनके लिए खाद मिलता है, हमारे खेतों के लिए खाद भी मिलता है, हमारे लिए घी दूध मिलता है।
7: और अपन अगर खेती से अपन पशुओं की बात करें तो खेती से पशुओं के लाने का मिला थे,
6: खेती से उनके लिए चारा मिलता है।
7: तो कहने का मतलब जो है कि पशु अपने लाने खेती में फायदेमंद है और खेती पशुओं के लाने फायदेमंद है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
6: हाँ।
7: तो जी के लाने अपन जो है पशु पालन है ना, और बीच में जो दूध दही मिला था वह अपने लाने जो है अलग से मतलब आमदनी को एक साधन हो जाते हैं। तो जैसे अपन पशु अपन ने पाले हैं तो इनकी अपन देखभाल कैसे अपन करते हैं?
6: देखभाल जैसे गांव में जमीन पड़ी है तो उधर चराने चले जाते हैं, उसके बाद में घास खेतों से काट के लाते हैं, खेत की जो मेड़ रहती है तो उन पे से घास काट के लाते हैं।
7: अपन देख रहे हैं जो है अपन पशुओं ने राख भी कहलाने छाव और टीम सेट लगा रखी है
6: जी।
7: तो जा तो बहुत ही अच्छी है, और इनमें अपन पशुओं के लाने जो है दूध देने वाले पशु हैं उन्हें अपन जो है जब तक वो दूध दे रहे हैं दूध बढ़ा भी कहलाने उन्हें अपन उन्हें कौन कौन कौन सी चीज़ें अपन उन्हें खा भी कहलाने देते हैं?
6: कई तरह की खरा रही है, कई तरह के दलिया हैं और सोयाबीन है, बाजरा है, कई तरह की चीज़ें खिलाते हैं
7: ये सब दूध बड़ा भी कराना अपन को देते हैं ना। और इनके की जो है अपन जैसे बात कर रहे हैं कैसे सार की जो साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई अपन जाके कैसे कैसे कब कैसे कितने बेर अपन कौन से टाइम कर देते हैं?
6: सुबह मॉर्निंग में हो जाती है साफ़ सफाई जब भैंसे को निकाल देते हैं चरने के लिए, उसके बाद में शाम को भी हो जाती है थोड़ी, दोपहर में आती है भैंस तब।
7: और अपन बात करें इनमें पशुओं के जैसे कभी स्वस्थ हैं और कभी अपन लगे कि जैसे पशुओं में कोई बीमार हो गई पशु, तो उनके लाने फिर अपन जो है इनको जैसे कोई टीकाकरण वगैरह होते हैं वो अपन करवा होते हैं
6: जी, हर साल टीकाकरण होता है।
7: तो अपन जो है खेती के संग अपने लाने पशु पालना चाहिए,
6: खेती करना है तो पशु पालना जरूरी है
7: जी,
6: तो पशु पालना जरूरी है, इतना ही खेती जरूरी है।
7: तो जी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है
6: जी।
7: तो भैया आपने अपने किसान महीने के लाने मिला तो अच्छी जानकारी दी, के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो किसान भैया देखो बीच में जो है जब भैया हैं तो अपन इनसे भी जो है जाना था खेती किसानी के बारे में। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
8: अंकित रावत।
7: अंकित जी अपन नी उम्र कितनी हो गई? 18 साल की अपनी उम्र हो गई, और अपन जो है खेती किसानी से जुड़े हुए हैं है ना। तो अपने पास अगर अपन बात करें खेती की जमीन की, तो अपने पास खेती की जमीन कितने है?
8: 50 बीघे समथिंग।
7: 50 बीघे अपने पास जमीन है। और खेती के जमे अपने सिंचाई की बात करें, सिंचाई के साधन कहाँ है जिनसे अपन जो है खेती की सिंचाई करा था?
8: जी ये ड्रिप वगैरह,
7: ड्रिप अपने पास
8: ट्यूबवेल वगैरह।
7: और खेती के संग जो है अपने पास जो पशु पाले हैं अपन ने
8: जी भैंस गाय वगैरह
7: सब है। तो अपन खेती जैसे कर रहे हैं तो खेती और पशुपाल दो, खेती के संग पशुपाल क्यों जरूरी है?
8: इससे दही दूध मिल जाता है सबके लिए खाने के लिए, और ये खाद भी बन जाता है रासायनिक यंत्र
7: गोबर को।
8: हाँ हाँ।
7: अच्छा जी, गोबर की खाद को उपयोग अपन अगर खेतन में कराते हैं तो ज़्यादा का फायदा होता
8: है? इससे ऊर्जा उपज ज्यादा निकलती है, पौधा तैयार हो जाता है, बढ़ता है मतलब।
7: जैसे तो अपन बाजार में जो बाजार को रासायनिक खाद और उर्वरक लेके आते हैं भावी, तो अपन खेत में देते हैं भावी फसल में देते हैं।
8: हाँ।
7: तो वो अच्छो के गोबर की खाद अच्छी?
8: गोबर का खाद सही है।
7: क्यों?
8: क्योंकि जहाँ देर तक वो करता है लाभ देता है फसलों को, जो 2-3 महीने तक कम करता है।
7: तो जहाँ वो लागत की बात करें अपन, पैसा अपने जो है कौन सी जमा ज्यादा लगा, रासायनिक खाद में ज्यादा पैसा लगा था या गोबर की खाद में ज्यादा?
8: रासायनिक खाद वगैरह हम ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसमें नहीं होता है।
7: और अपन बात करें रासायनिक खाद जो है खेतन में अधिक समय तक काम करा था या गोबर को खाद?
8: गोबर का खाद अधिक समय तक काम।
7: रासायनिक खाद की बात करें तो जी कितने समय तक काम करा था?
8: 2-3 महीने के समथिंग
7: बस।
8: बस
7: होबा के बाद गोबर को खाद?
8: गोबर का खाद तो 2-3 साल तक काम करता है।
7: 3 सालों काम करा था। तो कहने का मतलब जो है कि अपनी लागत जो है रासायनिक खाद उर्वरक में ज्यादा आते हैं। और दूसरी बात जो है कि रासायनिक खाद उर्वरक का उपयोग अपन जो कर रहे हैं जैसे स्वास्थ्य पे भी का जो प्रभाव पड़ता है?
8: क्या
7: स्वास्थ्य पे अपन जो जाकी चीजें खाते हैं जैसे अपन दवा छिड़क के कोई चीज अपन खा लें तो स्वास्थ्य में नुकसान?
8: हाँ, स्वास्थ्य नुकसान करता है।
7: और गोबर की खाद में?
8: गोबर का खाद कोई नुकसान नहीं करता
7: है ना।
8: नहीं
7: तो जिस तरह से ही फायदा है,
8: फायदा है।
7: और जाको भावी पहलाने जो है गोबर की खाद से जो पैदावार होते हैं उनको भाव अच्छा मिला थे?
8: हाँ जी
7: है ना।
8: हाँ।
7: रासायनिक खाद को उतना नहीं मिल पाओ?
8: नहीं मिलता।
7: तो आपने अपने किसान भैया के लाने अच्छी जानकारी दी, कराने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो किसान भैया देखो भाई बीच में जो किसान भैया बैठे हैं तो अपन इनसे जो है बातचीत कर रहे थे खेती किसानी के बारे में, तो जाना थे इनको नाम, तो भैया अपना नाम बताओ।
9: मेरा नाम आसाराम रावत है।
7: आसाराम जी अपनी उम्र कितने को हुई होगी?
9: मेरी उम्र है सर 38 वर्ष की है।
7: 38 साल की अपनी उम्र हो गई। और अपन बात कर रहे हैं खेती किसानी की, तो अपन जो है कैसे साल से खेती किसानी काम कर?
9: सर मैंने पहले तो जैसे मान लो इंटर तक पढ़ाई की थी और वो की थी अपनी 2002 तक। इसके बाद में मैंने फिर अपनी खेती का काम संभाला है।
7: तो मतलब लगभग जो अपन बात करें तो 20-21 साल करीब खेती का हुआ है। तो अपन जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपन खेती की तरफ अपन कैसे अपना लगाओ या झुकाओ, खेती की तरफ कैसे आ गए?
9: चलो साहब देखो, वो तो एक चीज होती है, जैसे हमने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में फिर हमको सिस्टम लगा, क्योंकि मैं घर में अकेला था पहले, तो इसको खेती को संभालने वाला नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ा। मतलब अपनी इतनी पढ़ाई कर ली कि अपनी समझदारी आ गई, उसके बाद में मैंने फिर खेती पे ही अपना ध्यान लगाया।
7: तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि अपन जो है देखो पढ़े लिखे होवे के बाद अपन खेती कर रहे हैं। कैसे कि आजकल की खेती अपन अगर बात करें, आधुनिक खेती हो गई है, नए नए बीज आ गए, नए नए खेती के यंत्र आ गए, नए तरीका आ गए, तो अगर अपन पढ़े लिखे हैं और अपन खेती कर रहे हैं तो अपन जो है सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं।
9: बस पढ़ाई का तो एक माध्यम अपना ये था कि उसको सारी चीज़ों को समझ सकें कि आगे अपन को क्या करना है, कैसे करना है इस चक्कर में। इसके बाद में जैसे मान लो अब खेती है, तो खेती आधुनिक तरीके से ऐसी हो गई है कि यदि समझ नहीं है तो अवाल मान लो कहीं दुकान पर चले जाते हैं अपन, तो अपन ने जो चीज़ अगर चाहिए

0: कई हानियाँ होती हैं, इसलिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है और खेती का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे दुनिया बहुत से लोग घूम रहे हैं लेकिन सबके लिए सर्विस तो नहीं मिलती है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: अगर सभी लोग जैसे सर्विस में जाएंगे तो फिर इस धरती माता का क्या होगा,
1: खेती कौन करेगा। सही बात है, अन्नदाता कौन माने वो फिर माने। तो सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपके, आपने हो पढ़ भी लिखे के बाद आपने स्वयं को रोजगार है जी। हाँ। और अपन बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, जो एक बिना पढ़ो किसान जो है उसे पैदावार नहीं ले सकते, बस अपन दुगनी पैदावार ले सकते हैं।
0: हाँ, ले सकते हैं। अगर अपने अंदर समझदारी है तो खेती में उसमें अब कई सिस्टम चल गए हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं।
1: तो जब अपन बात कर रहे हैं जहाँ अपने पास खेती की ज़मीन की, तो खेती की अपने पास ज़मीन लगभग कितने है?
0: ज़मीन अपने पास 18 बीघा ज़मीन है।
1: 18 बीघा ज़मीन है। और जहाँ अपन बात कर रहे हैं सिंचाई के साधन की, तो अपने पास जहाँ सिंचाई के साधन अपने पास कौन से हैं?
0: सिंचाई के साधन फिलहाल में तो जैसे मान लो ये अपना ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल चलाते हैं अपन। तो टमाटर के लिए अपन ड्रिप से यूज करते हैं कि उसमें पानी की बचत हो। ऐसे मान लो 5 बीघे मेरे टमाटर लगे हैं, तो 5 बीघे में अगर वैसे पानी चलाओगे तो 5 दिन लगेंगे, यदि ड्रिप से उसमें पानी चलाओगे तो 5 घंटे लगेंगे।
1: तो कहने का मतलब जो है कि कम पानी में भरपूर फसल कराना जो पानी लग जाते हैं। हाँ। और जैसे कहा पानी की बर्बादी नहीं हुई।
0: हाँ, पानी की बर्बादी नहीं हो, इसीलिए समझदारी से सोच समझ के खेती की जाती है कि इसमें कम पानी लगे और अपने पानी की बचत होए और खेती की मात्रा भी पर्याप्त मिले।
1: अपने पास 18 बीघा ज़मीन है, तो अपन इस समय में अगर अपन बात करें वर्तमान में, तो अपन ने कौन कौन सी फसलें अपने खेतन में अपन लगाई?
0: देखो इस समय देखो हर एक किसान की अलग अलग चॉइस होती है, कोई सोयाबीन करता है, कोई टमाटर भी लगाता है, कोई मिर्ची भी लगाता है, अरहर भी लगाता है, और एक जैसे उड़द लगाता है, तो सारी चीज़ें हैं लेकिन वो अपने अपने हिसाब से किसान करते हैं।
1: अपन ने जो है अपने खेतन में कौन कौन सी चीज़ अपन
0: अपने पास है, जैसे उसमें मिर्ची है।
1: तो अपन अगर बात करें मिर्ची की,
0: हाँ,
1: तो मिर्ची अपन ने कई बीघा में लगाई है?
0: मिर्ची अपनी 1 बीघे में लगी हुई है।
1: 1 बीघा मिर्ची लगाई है। और मिर्ची जैसे अपन ने लगाया, अपन देख रहे हैं फलदार पेड़ भी आपने लगाए हैं, तो मिर्ची की अगर अपन बात करें तो मिर्ची की जो है अपन ने शुरू से तैयारी कैसे करी?
0: मिर्ची की तैयारी ये है, जैसे वैसे आप तो ये ऐसे बीज आते हैं हाईब्रिड के, टमाटर की तरह ही मिर्ची को तैयार किया जाता है, और उसकी कई बार पहले तो जैसे मान लो जुताई करते हैं अपन, जुताई करने के बाद में बारिश ना होने से पहले फिर अपन उसमें जैसे मेड़ बनाते हैं, बेड बनाते हैं, फिर इसमें खाद डाला जाता है, खाद डालने के बाद में इसमें फिर ड्रिप बिछी जाती है, फिर इस पर मल्चिंग की जाती है, जिसके बाद में फिर अपनी मिर्ची का पौधा रोपण होता है।
1: मल्चिंग करने को अपना उद्देश्य कर रहे थे, मल्चिंग अपन क्यों करत?
0: वैसे जहाँ तक जो देखो सर मेरी समझ है, वहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक तो पहली बार तो क्या होता है, जैसे मल्चिंग अपन ने कर दी, करने के बाद में जैसे फर्स्ट में अपन जो खाद डालते हैं जितना भी अपने को डालना होता है, तो जो बारिश होती है उससे अपना एक तो पहले नंबर खाद धुलता नहीं है जहाँ की जहाँ वो रहता है, दूसरी उसमें क्या है कि कचरा कम होता है, मजदूर की रेट आज बढ़ चुकी है इसीलिए जैसे वो खाली जगह बचती है उसमें दवाई डल जाती है, और दूसरी क्या है कि कचरा कम होता है तो उस पर मच्छर कम बैठता है, और इसमें एक और चीज़ और है कि जैसे टेम्परेचर ऊपर से जैसे हाई होता है तो पौधे की जड़ पर कम जाता है, और
1: से मतलब ऊपर ही
0: हाँ अंदर तक प्रवेश नहीं होता है, और एक और चीज़ और है जैसे बारिश अगर तेज होती है तो उसमें पानी कम जाता है तो वो उसमें जड़ें नहीं गलती हैं, पौधा खराब नहीं होता है। और भी बातें होंगी लेकिन अपन इतना ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने कि
0: हाँ होता है, जैसे कई लोग सोचते हैं सर इसमें के मल्चिंग बचाने से ये कचरा नहीं होता है, गुड़ाई का फायदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके कई सिचुएशन होते हैं,
1: कई चीज़ का फायदा होता है। तो अपन ने जैसे मिर्ची लगाई है तो 1 बीघा में अपनी जो है लागत कितने का गई हुई?
0: लागत देखो मैं बताऊं सर आपको, मिर्ची का कम रहता है मान लो 25 और 30 हजार तक,
1: 30 हजार रुपये अपनी 1 बीघा में लग गए। अगर वर्तमान में अपन बात करें तो वर्तमान में मिर्ची की अपनी क्या स्थिति है?
0: वर्तमान में स्थिति ठीक है, रेट भी बढ़िया चल रही है, जैसे 25-30 रुपये केजी चल रही है।
1: तो वर्तमान में पैदावार अपनी मिर्ची की मिल रही है अपने?
0: हाँ।
1: तो अब तक अपन ने अगर बात करें जैसे 30 हजार रुपये अपनी लागत आ गई।
0: हाँ।
1: और पैदावार की अपन बात करें तो जामे जो है पैदावार फैलाने लगभग कितने तक अपने मिलने की संभावना?
0: देखो सर उसमें एक चीज होती है, जैसे मान लो रेट डाउन हो गया तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अपनी लागत भी नहीं निकल पाती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपनी लागत भी निकल जाती है, उससे दुगना और तिगना मुनाफा भी मिल जाता है।
1: वर्तमान में तो मतलब मिर्ची को
0: फिलहाल की स्थिति ठीक है, हाल की स्थिति में अब जैसे मान लो एक चीज की अब कमी है, जैसे मान लो बारिश नहीं हो रही।

0: टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिलहाल किसान की स्थिति, हर किसान की स्थिति संकट में है।
1: हाँ, बरसात की वजह से पानी की समस्या है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि अपने पास जो है, जो सामने देख रहे हैं कि ड्रिप सिस्टम पूरा लगा हुआ है।
0: नहीं, तो वो
1: ड्रिप सिस्टम आई है ना, टपक सिंचाई,
0: जैसे मान लो ड्रिप सिस्टम लगा, लेकिन इसका टमाटर का मिर्ची का एक वो सिस्टम होता है कि जैसे क्लाइमेट अगर 25 और 30 के बीच में रहता है तो उसमें कल्ले निकलते हैं, फल में कन्वर्ट होता है। यदि मान लो आज की स्थिति में जैसे चल रहा है 35-36 के आसपास में चल रहा है, तो थोड़ा ये दुखदाई है।
1: हाँ, मतलब जब टेम्परेचर जरूरी है, लेकिन अपने पास अगर पानी है तो अपन जो है,
0: हाँ, उसको धीरे धीरे नॉर्मल कर लेते हैं,
1: नॉर्मल अपन मतलब पानी अपन की पूर्ति कर लेते हैं। और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी की मांग ही पौधा मांगा था, तो पौधे की पौधा के लाने पानी की टपक सिंचाई से अपन कर सकते
0: कर सकते हैं,
1: और जैसे अपनी पानी की बचत भी होती है। तो अपने पास अगर बात कर अपन खेती के यंत्रण की, तो खेती के कौन कौन से यंत्र अपने पास है?
0: देखो, वैसे फर्स्ट में तो मान लो एक जैसे ट्रैक्टर होता है मेन चीज, तो ट्रैक्टर होता है तो उसके साथ अपन ने पर्याप्त और सामान भी होते हैं, जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, और बेड बनाने वाला रेजर है, और मल्चिंग करने वाली मशीन है, लेकिन ये हर किसी किसान के पास नहीं होते, एक दूसरे से लेके और सारा लेते हैं, कोई भाड़े से करवाता है, कोई अपने संपर्क में लेता है।
1: और किसान भैया, देखो अपन देख रहे हैं कि अपने पास जो अपने फलदार पेड़ भी लगा रखे हैं, तो फलदार पेड़ खेती के संग फलदार पेड़ लगाओ क्यों आवश्यक है, क्यों लगाना चाहिए?
0: ये अगर अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाएं तो उससे अपन ने पहले नंबर का काम होता है, बरसात हवा अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्यावरण को और ये शुद्ध वायु छोड़ते हैं अपने लिए,
1: जो अपने लाने प्राण वायु कहते हैं ना,
0: और उसे और अपने लिए फल भी देते हैं।
1: तो अपने किसान भैया के लाने जो है हमेशा खेत की अगवन कर रहे हैं, तो खेत की अपनी जो भी खाली जगह है ऊपर जो फलदार
0: पेड़ पौधा लगाना,
1: छायादार पेड़ जो लगाना चाहिए
0: बिल्कुल लगाना चाहिए।
1: और खेती के संग एक आवश्यक है पशुपालन, तो पशुपालन में अगर अपन बात करें तो अपने पास पशु है?
0: हाँ, अपने पास भैंसिया भी है, गैया भी है, और पशुपालन भी जरूरी है। देखो, उसमें दोनों ही चीजें होती हैं कि एक तो अपने जैसे मान लो मेहनत कर रहे हैं अपन, किसान आदमी है, तो अपने को खाने पीने के लिए जरूरी है।
1: और फिर इनसे अपन अगर बात करें दूध दही तो मिला थे, इसके बाद फिर बात आउट है गोबर की।
0: हाँ,
1: तो बात से अपने गोबर भी मिला,
0: गोबर भी मिलता है, और अगर खेती करनी है तो ये गोबर की खाद जरूरी है।
1: अपन देख रहे हैं कि किसान भाई ज्यादातर रासायनिक खाद को उपयोग करते हैं, गोबर को कम उपयोग करते हैं, तो दोनों में से सबसे अच्छी खाद खेती के लाने कौन सी मानी?
0: नहीं, गोबर की मानी जाती है, वो इसलिए है कि इसमें देखो एक तो मिट्टी को मुलायम रखती है ये, ठीक है, और इससे क्या होता है जैसे जे वाले खाद हैं रासायनिक, तो इससे क्या जमीन के तत्व खत्म होते हैं, क्योंकि आजकल किसान डाल रहे हैं तो इतना डाल देते हैं कि उसको डालते डालते जो जमीन में जितना जो तत्व होता है उसको पूरे को निचोड़ देते हैं।
1: तो आपको कहने को मतलब यह है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह खत्म हो रही है।
0: हाँ,
1: है ना, और गोबर की खाद से उर्वरा शक्ति बनी रहे थे, तो अपने लाने चाहिए अपन गोबर की खाद को उपयोग करें, और खेती के संग पशु जरूर पालें,
0: पशुपालन।
1: और किसान भैया से आपका क्या वो चाहो? तो
0: नहीं, मेरा सब किसान भाइयों से यही निवेदन है कि खेती कर रहे हैं, खेती भी करें लगन से, और पशु भी पालें, जिससे अपने लिए भी सुविधा मिले और जमीन के लिए खाद भी मिले, सारी सुविधाएं इनसे बनी रहती हैं।
1: तो भैया, आपने अपने किसान भैया के लाने मिला था, अच्छी जानकारी दी के लाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया, देखो मछावली गांव से अपनी हो रही चलवेगी बेरा, तो सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम।
2: भैया बहनों, अभी अपन सुन रहे थे किसान मणि गांव में जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम था, जहाँ में किसान भैया बहन से बातचीत कर रहे थे अपने मंगरू भैया, और जी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल, और भैया ग्राम है तो मछावली विकासखंड करेरा जिला शिवपुरी।
1: और बहन देखो, अपन किसान भैया के लाने बताते रहते हैं कि अपने लाने जो है जैसे कोई खेती आगे की करने हैं।
2: हाँ।
1: तो की तैयारी अपने लाने जो है ऐसे अपने लाने कर लेना चाहिए। अब जैसे समय जैसे गर्मी को मौसम चल रहा है, या कछु भैया कहे कि जैसे पेड़ पौधे लगाओ चाहते हैं।
2: हाँ।
1: तो उनके लाने जी बहुत ही अच्छा मौसम है कि ऐसा कि जैसे समय में जो है अपने खेत में अपने जो पेड़ लगाने हैं उनके हिसाब से अपन जो है गड्ढा खोद कर डाल दें। अब जैसा समय जैसे अपन ने गड्ढा खोद कर डाल दे तो वो कहे कि एक डेढ़ महीना ना बढ़िया से तप जाएंगे, उसके बाद अपन कर लो खाद की व्यवस्था जो वहाँ अपन भरने हैं। तो बाकी लाने जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जिस सब अपन कहा है कि किसान भैया के पास खेत बने रहे थे, तो भी अपने लाना जो है बिल्कुल पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए खाद। अब आगे बाद फिर अपने चाहिए कि उगी अपने पूरी तरह से तप जाए, फिर अपने जो देखने हैं कि अपने पौध की व्यवस्था कहाँ से करने हैं। है ना,
2: अच्छी तो किस्म के पौधे,
1: अच्छी किस्म के पौधे लगाने। आजकल तो अपन देख रहे हैं कि जो हाइब्रिड जो बीज आ रहे हैं ना, अपन दो दो साल में जो है बढ़िया फल आ रहे हैं, तो ऐसे अपन जो है पौधा ले सकते हैं। और कछु जैसे औषधीय पौधा लगाना चाहिए, फलदार पौधा लगाना चाहिए, छाए वाले भी पौधा लगाना चाहिए, सभी प्रकार के पौधे लगाना चाहिए, एक ही तरह के नहीं होने चाहिए। जैसे आम लगा दे तो आम ही आम नहीं होने चाहिए, कछु आम हो, कछु जाम फल हो, नींबू हो, आंवला हो, है ना,
2: नीम का
1: पेड़ हो, सभी काम में आते हैं। और जे अपन ऐसा नहीं की अपने पेड़ लगा दू और खेती नहीं कर सके, अपन पेड़ भी लगा सकते हैं और संग खेती भी कर सकते हैं। मैंने कहा है कि अपन 10-10 फीट की दूरी पे अपन जैसे लगा जाओ, चारों तरफ 10-10 फुट की दूरी अपन बना के रखो, वहां में जो है अपन बढ़िया से पैदावार ले गए और अच्छे से पैदावार अपन उनमें ले सकते हैं। और अपने भैया के लाने मौसम की जानकारी बता देते हैं, तो भैया देखो आज अपने दिन को न्यूनतम तापमान रहो 31 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहो 42 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रही 21%, हवा की गति रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
2: तो अपन भैया बहनों से जय कहेंगे कि भैया मौसम को देखते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, और भैया जय के संगे आप जो किसान मणि कार्यक्रम है वास हो रही है चलवे की बेला, तो अपन सगाई भैया बहनों से ले लेते हैं आज्ञा। तो रूबी बहन और
1: मंगरू भैया को आज्ञा देव, राम राम, जय जवान जय किसान।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में
4: सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
4: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहाँ 5 नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
5: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था। और थर्ड समिट जो ओस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, AI को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है।
4: अंशु जी, आप को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
6: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड्स, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे।
4: सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
5: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल कहा, हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। और यहाँ पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है। तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का, वो इस प्रकार की रेजिलियंट, फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित

0: करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: So, अंशु जी, जो आप विस्तार की बात कर रही हैं, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो की पार्टनर्स हैं, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
2: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
1: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज़ में विश्वास रखते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहाँ विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है।
0: तो अनु जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट हैं ये समाप्त हों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग करते हैं, यूएनएससी में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, इशू बेस्ड एंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और नॉर्डिक की तमाम देश जो हैं सोनू जी वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
1: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
1: सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
0: बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक

0: पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा है, और बाकी के जो ये तीन सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो 19 बिलियन यूएसडी से
1: जी
0: 20 बिलियन यूएसडी तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक 30 बिलियन यूएसडी तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से 100 बिलियन यूएसडी का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं, हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा, यदि हम देखें पूरे विश्व में, तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए एफडीआई बढ़ाने, और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से, देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इसके
1: बिल्कुल
0: अलावा भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलकर साथ में होस्ट करेंगे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
1: जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में, वो 4 गुना बढ़ा है और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। सो अब जो ये बायलैटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
0: निश्चित
1: बहुत
0: तौर पर
1: संक्षेप
0: हम
1: में बताएं। जी
0: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहाँ है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं।
1: जी सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, मजरू के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। अनजान के लिखे बोल, बप्पी लहरी का संगीत और फिल्म का नाम है शराबी।

कारवां फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरू की शब्द रचना और आर डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी कड़ी में आइए आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं फिल्म प्रिंस से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।

0: 100% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया के राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है

0: कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

खान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीकेकार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दूतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मर्तबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुब्तला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका ये फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और ये पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मर्तबा 23वीं भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में आईआईएमसी के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में
बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में आबशार गज़ल सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में और साथ ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की गज़लों से। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। अहमद शाह अब्दाली के हमले के ज़माने में दिल्ली छोड़कर अपने ख़ानदान के साथ आगरा आए और अकबर आबादी हो गए। दोस्तों, तारीख़ अदब उर्दू मुरतब करने वाले के लिए एक बड़ी दिक्कत नज़ीर अकबर आबादी के सिलसिले में होती है, वो ये कि समझ में नहीं आता कि उन्हें किस दौर के शौरा के साथ रखा जाए। उनकी सही तारीख पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर राम बाबू सक्सेना का ख्याल है कि हमला नादिर शाही के वक्त दिल्ली में पैदा हुए और यहीं करीन कयास भी है, क्योंकि उन्होंने तवील उम्र पाई थी और उनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। अगर पैदाइश 1739 या 1740 के करीब मान ली जाए तो अलबत्ता नज़ीर के अहद मुईन करने में कुछ आसानी होती है। फिर भी ज़बान, तर्ज बयान और मौजू के लिहाज से उनको किसी दौर से वाबस्ता करने में कतई फ़ैसला करना बाकी रह जाता है। हम उनको अपनी दुनिया आप समझकर हर दौर से अलग रखते हैं। उनके कलाम की खसूसियात खुद एक दौर की खसूसियात के बराबर हैं। नज़ीर ने आम रिवाज के मुताबिक अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी और संस्कृत पर भी नज़ीर को महारत हासिल थी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। नज़ीर का ताल्लुक अवाम से गहरा था। नज़ीर अवाम के साथ उठना बैठना पसंद करते थे और उन्हें उसका फ़ायदा भी हुआ। यानी जब उन्होंने शेर गोई की इब्तिदा की तो अवामी ज़बान व लहजे का सहारा लिया। यही वजह है कि उनकी शायरी अवाम में काफ़ी मकबूल हुई। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के एक अजीम और मकबूल आम नज़म निगार थे। उन्होंने शायरी की दीगर असनाफ में भी तबा आजमाई की, लेकिन उन्हें मकबूलियत नज़म निगारी में मिली। अहम बात यह है कि उन्होंने ऐसे दौर में नज़म निगारी की तरफ रुख किया जब हर तरफ गज़ल गोई, कसीदा गोई और मसनवी निगारी वगैरह का खूब चलन था। उस वक्त उनके सामने नज़मों के ख़ास नमूने भी मौजूद नहीं थे। नज़ीर अकबर आबादी ने ऐसे दौर में नज़म निगारी की दुनिया में कदम रखा और इस सिन्फ को बुलंदी अता की। सामईन, जैसा कि हम वाकिफ़ हैं, हमारा प्रोग्राम आबशार गज़ल गज़लों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। शिव हरि का संगीत है और फिल्म का नाम है डर।

आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के लिखे बोल। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म शक्ति से। आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में। देव कोहली का लिखा ये गीत, राम लक्ष्मण का संगीत है और फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

किशोर कुमार की आवाज़ में यह सुना फिल्म अनुरोध का ये गीत आपने, आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए पंडित कुमार गंधर्व का हमीर राग पर ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का हमीर राग पर ख्याल गायन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।